सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 24 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपके अभिवादन के साथ अब आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन प्रसार सभा।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजना चाह रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने को है, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश

0: से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly translate.

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप वंदना सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: www.radio.in।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में आपका स्वागत है। आत्मा हर जीवित प्राणी के भीतर मौजूद वह शाश्वत निराकार और चेतन ऊर्जा है जो शरीर को जीवन देती है। इसे हमारे अस्तित्व, भावनाओं और चेतना का मूल केंद्र माना जाता है।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
5: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा के साथ। मनुष्य की आत्मा एक अमूर्त शाश्वत और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप चेतना और जीवन का आधार मानी जाती है। यह शरीर को जीवित रखती है और विचार भावना व इच्छाओं का केंद्र होती है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: परमात्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और आत्मा। इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च आत्मा। हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में इसे भगवान, ईश्वर या सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है।

भारतीय आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार परमात्मा एक दिव्य ज्योति है जो सभी गुणों से भरपूर है। यह हर प्राणी में मौजूद शुद्ध ऊर्जा और चेतना का विस्तार है।

0: ये थी आज की वंदना। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन बिंदु।
1: भगवत आराधना में विश्वास का होना अति आवश्यक है। आपको विश्वास नहीं है तो मुझे लगता है कोई आराधना, पूजा पाठ, गंगा स्नान कोई मतलब नहीं है। अगर विश्वास है तो छोटी सी भगवत क्रिया भी बहुत बड़ी फलदायिनी है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती मैया प्रयागराज से गुजर रहे थे और भगवान शंकर ने पार्वती मैया से कहा कि गंगा में स्नान करने हम लोग भी चलते हैं। तो दोनों लोग आए और उन्होंने जब प्रयागराज की भीड़ देखी तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि आप कहते हो कलयुग में भक्त ही नहीं है, इतने अत्यधिक भक्त स्नान करने आए हुए हैं। तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें लगता है कि ये सारे भक्त हैं, लेकिन ये सब भक्त नहीं हैं, कुछ तो देखा देखी आए हैं, अपने अपने कारणों से हैं, लेकिन भगवत निष्ठा के साथ आने वाले बहुत कम हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी की बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, आप सत्य नहीं कह रहे हैं, अगर ये सत्य होता तो लाखों की भीड़ में ये भक्त ही नहीं है, क्यों आते। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, अगर तुम्हें लगता है कि सारे भक्त हैं तो तुम इनकी परीक्षा ले लो, पता चल जाएगा कौन भक्त है। तो भगवान भोले बाबा से पार्वती जी ने कहा ठीक है, हम इनकी परीक्षा लेते हैं। तो जहाँ से लोग गंगा जी में स्नान करके जा रहे थे उसी मार्ग में भगवान भोलेनाथ ने माया से एक कुएं का निर्माण कर दिया और उस कुएं में स्वयं प्रविष्ट हो गए और पार्वती जी से कहा कि कोई आए तो कह देना मेरे पति को बाहर निकाल दो, लेकिन अगर तुमने जीवन में पाप किए होंगे तो तुम भी कुएं में गिर जाओगे। पार्वती जी कुएं के किनारे बैठ गईं, भगवान भोलेनाथ कुएं के अंदर, जो लोग जाते मेरे पति को बाहर निकाल दो, मेरे पति को बाहर निकाल दो, कई लोग आए, लाखों लोग आए गए, कई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पार्वती जी की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो ध्यान दे भी रहा है, पार्वती जी उनसे कहती है अगर तुमने पाप किए होंगे तो तुम भी कुएं में गिर जाओगे। तो कुछ लोग हाथ बढ़ाए भी, फिर उन्होंने हाथ हटा लिया। एक व्यक्ति जो गंगा जी में स्नान करके भीगे वस्त्रों के साथ आ रहा था, अचानक पार्वती जी पर उसकी नज़र पड़ी। उसने कहा माता जी क्यों आप परेशान हैं, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति देव इसी कुएं में गिर गए, मैं सबसे उन्हें विनय कर रही हूँ, कोई भी मेरे पति को बाहर नहीं निकाल रहा है, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पति को बाहर निकाल दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है माँ, मैं निकाल देता हूँ। उसने हाथ बढ़ाया तो पार्वती जी ने कहा कि अगर तुमने पाप किए होंगे जीवन में तो तुम भी इसी कुएं में गिर जाओगे और तुम्हारी भी मृत्यु हो सकती है। तो उसने कहा ठीक है माँ, मृत्यु हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा क्या तुमने जीवन में पाप नहीं किए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल किए हैं। स्वीकार किया उसने, पाप किए हैं तो फिर क्यों निकाल रहे हो। तो पार्वती जी ने कहा उस व्यक्ति ने कि मैंने जीवन में पाप किए हैं, अपराध किए, मुझे पता नहीं मैंने कितने पाप किए होंगे, मुझे पता नहीं मैंने कौन कौन से अपराध किए होंगे, लेकिन अगर गंगा जी में स्नान करने के बाद भी अगर मेरे मन में यह भाव नहीं उदित हुआ कि मेरे सारे पाप धुल गए तो फिर गंगा जी में स्नान करना व्यर्थ है, और हाथ पकड़ के शंकर जी को बाहर निकाल दिया। जब उसने बाहर निकाला तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों की भीड़ में यह एक ऐसा भक्त है जो पूरे विश्वास के साथ आया है गंगा जी में स्नान करने कि मेरे पाप गंगा जी में धुल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वह विश्वास हमारे मन में नहीं हो पाता, जिस विश्वास से परमात्मा प्रसन्न होने वाले हैं, जिस पर विश्वास से आपका कार्य बनने वाला है, जिस विश्वास से आपको वह प्राप्त हो जाता है जो प्राप्त आपको होना चाहिए। तो कहने का आशय यह है कि आप उन पर विश्वास करिए, आप विचार

0: जी, जब भक्ति यात्रा में प्रवेश करती है तो उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं, जब भक्ति अन्न में प्रवेश करती है तो उसे प्रसाद कहते हैं। तो जब उसकी स्वरूप का, भक्ति का स्वरूप पढ़ने से यात्रा और भोजन प्रसाद और तीर्थ यात्रा के रूप में परिणित हो जाता है, तो पूर्ण विश्वास के साथ कभी भी कोई भगवत कार्य करिए तो पूर्ण निष्ठा और विश्वास उसमें जरूर हो।
1: ये था आज का चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज की विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

प्रातःकालीन प्रसार सभा में फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा प्रातः 7:31 पर, प्रातः 8:45 पर और 10:05 पे। प्रातः 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तमन्ना बानो से उन गाई उनकी कुछ गजल।

11:05 पर प्रातः लोकरंग के कार्यक्रम लोकगीत में, लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज आप सुनेंगे भोला यादव और उनके साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत। NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे दिन 12 बजे।

हमारी मध्यकालीन प्रसारण सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर, दिन 12:30

नारी जगत कार्यक्रम में दैनिक 1:15 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम और भेंट वार्ता। इसे प्रस्तुत करेंगे संध्या त्रिपाठी।

शाम 6:45 पर लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज आप सुनेंगे रामज्ञान यादव और उनके साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत। कार्यक्रम में रात 8 बजे सुन सकेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा वर्तमान सरकार के 12 वर्ष का समग्र मूल्यांकन। इसमें हिस्सा लेंगे महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश कुमार

श्रीवास्तव और मनीष कुमार द्विवेदी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रात 10:30 पर आप सुन सकेंगे मल्लिकार्जुन मंसूर के गाया राग शुद्ध नट। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज के हमारे विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनयपूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन, वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: ये था आज का श्री रामचरित मानस से लिया गया संगीतमय प्रसंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:54 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से

0: मीडियम में 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ FM 100.1 MHz पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
7: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ही आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 7:17 और 45 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
8: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
9: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
8: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है, सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
9: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
8: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं।

0: सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
3: हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
4: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
5: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
2: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए

0: कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में SIT का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है। SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
2: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते

0: मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।

0: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
1: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
0: For details, log on to www.ddindia.com।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम पूर्वा सुहानी में रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म मिली में। शब्द रचना योगेश की थी और धुन तैयार किया था एसडी बर्मन ने। और आइए लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म सफर में। गीत लिखा है इंदिवर ने और धुन तैयार किया है कल्याण जी आने।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म अर्थ से, बोल कैफे आजमी के, संगीत जगजीत सिंह का और आवाज जगजीत सिंह।

सुन रहे हैं भूपेंद्र को फिल्म घरों दमे। गुलजार के लिखे गीत को संगीत दिया है जयदेव ने।

और आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म साथ साथ में। बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत कुलदीप सिंह का।

जगजीत सिंह और चित्र सिंह के गाए फिल्म साथ साथ के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:59 और 50 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में बारी बारी से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
4: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकाम

0: खामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास

0: दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की

0: ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़ैबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंग बंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो आबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीक शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेटरी तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नौजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रो के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने आईएएस 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत आजम और अवाम की फलाह बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क्यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद आबनाए हुरमुज में जहाजों की आमद और रफ्त बहाल, भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्रा बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनिनो की वजह से मानसून के असरात से निमटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी CUET पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायजनी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजवजा 2 तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

सर भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट।

लता मंगेशकर को सुन रहे थे फिल्म बड़ी बहन में। शब्द रचना राजेंद्र किशन की थी और संगीत दिया था हुसनलाल भगतलाल भगतराम ने। कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म बैजू बावरा से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना शकील बदायूनी की है और संगीत नौशाद का।

आप जो गीत सुन रहे हैं उसे गाया है मन्ना डे ने फिल्म सीमा में। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और आइए लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म नौजवान में। शायर के लिखे बोल को संगीत दिया है एस टी बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुनते हैं फिल्म हम दोनों में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है जयदेव ने।

और कार्यक्रम के अंत में मुकेश को सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश के गए फिल्म हिमालय की गोद के इस गीत के साथ ही हिट सुपरहिट कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:14:37 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ कोन से सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा करें।

101.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। अब प्रस्तुत है श्रावस्ती व सीतापुर जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
1: श्रावस्ती जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरी तरह योगामय नजर आया। करो योग रहो निरोग के संकल्प के साथ जिले भर में योग की बयार बही। सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर उत्साह का माहौल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ, जहां जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडाल में मौजूद हर शख्स योग के रंग में रंगा नजर आया। योग का ये उत्सव सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। इकोना के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, भारी संख्या में आम जनता ने एक साथ योगासन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में समाज को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों, परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर योगा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविरों में योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में विभिन्न योगासन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं ने योग को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी बताया। मुहर्रम के मौके पर श्रावस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को प्रशासन का साफ और कड़ा संदेश है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च कर रही है। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र नासिरगंज, इकोना, पिरवितनी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खुद ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। वहीं पीस कमेटी की बैठक के दौरान SDM संजय राय ने नासिरगंज के स्थानीय लोगों से बेहद भावुक और तार्किक अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाया जाता है, किसी की शहादत पर DJ बजाना बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे जेल की कार्रवाई होगी।
2: प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए मुहर्रम त्योहार मनाने के लिए, उसको सभी लोगों को अवगत कराएंगे तथा सबको विश्वास दिलाएंगे कि पुलिस और प्रशासन त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रशासन के द्वारा अभी रूट मार्च भी किया गया है, ड्रोन से निगरानी की गई है, शांति व्यवस्था कायम है तथा त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षक के महापर्व का आगाज हो चुका। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भारी लौ लश्कर और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ श्रावस्ती पहुंचे। भिंगा में जनप्रतिनिधियों, आला अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए सामाजिक जन कल्याण एवं जन जागरूक अभियान का भव्य शुभारंभ किया। श्रावस्ती में शुरू हुए एक बड़े बदलाव को लेकर प्रभारी मंत्री ने तारीफ की। सूबे के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ी खुशी जताई। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण को एक नई दिशा देने के लिए मंत्री जी खुद जमीन पर उतरे। मौका विश्व पर्यावरण दिवस का था, लिहाजा प्रभारी मंत्री ने सीधे एक्शन का रुख लिया। उन्होंने ऐतिहासिक रानी तालाब पहुंचकर खुद हाथों में झाड़ू थामी और श्रमदान किया। इसके साथ ही देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षक का संदेश दिया।
3: मुझे महसूस हुआ कि गांव का जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में जिसका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है, आयुष्मान कार्ड देने की योजना में 60 करोड़ लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, आज हर गरीब आदमी।
1: श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशानुसार जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत ददन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी में लगे स्टालों का निरीक्षण किया तथा किसानों को प्राकृतिक खेती करने की नसीहत दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि आजकल किसान रासायनिक खेती के दौर से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिसका प्रभाव उन पर और उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए कृषकों से अपील है कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे।
0: श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
4: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल पुलिस लाइन सीतापुर में

0: हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर नेहा अवस्थी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इससे हम सभी का शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। आयुष विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही सीतापुर में जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ आपदा से बचाव के हेतु व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें क्रमशः बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम बिस्वा तहसील अंतर्गत चहलारी घाट पर किया गया, जिसमें बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा नाव और स्टीमर की मदद से बचाया गया। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को सोमवार सुबह 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नजूल की भूमि पर बने कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी, जिसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
1: अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए। जहाँ भी हमारी नजूल की भूमि और नोटिस दे जहाँ जहाँ दिया गया उसको हम सब खाली करवाएंगे।
0: पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी महत्व के चलते नैमिष क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ आदि गंगा गोमती में स्नान के उपरांत पूजन अर्चन और दान दिया। केंद्र सरकार के सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी बृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शन सामग्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे, किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाता था। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गांव गांव तक विकास कार्य पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। गांव को पैतृक सड़कों से जोड़ा गया है। किसान के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गांव, गरीब, किसान एवं युवा के सर्वांगीण विकास के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदी गिरोह को गिरफ्तार कर कई बड़ी घटनाओं को पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। इस कार्यवाही में पुलिस को 50 लाख से अधिक की नकदी समेत जेवरात और लग्जरी वाहन के साथ चोरी के एटीएम कार्ड सहित असलाह बरामद किए हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। कार्यक्रम सुनेंगे देशगान, लेकिन उसके पहले ये संदेश।

पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से कार्यक्रम देशगान। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:29 और 48 सेकंड हो रहे हैं। कुछ पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, अब पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
2: उर्दू प्रोग्राम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद फर्रुख जमाल का आदाब कबूल हो। मुहर्रम का चांद नमूदार

विरासत हुसैन की, मेराजे जिंदगी है शहादत हुसैन की, दोषे रसूले पाक पे बैठे थे बिल यकीन, बेहद्दो बेगुमा है फजीलत हुसैन की, गिरिया कुना है आज भी वो वर्जे करबला, देखी है जिसने प्यास की शिद्दत हुसैन की, डूबी हों खूने दिल में तुम्हारी ये उंगलियां, लिखो सुखनवरों यूं हिकायत हुसैन की। करबला कत्ल गहे अहले तमन्ना है, करबला मजलूमियत का इस्तियारा है, करबला सब्र इस्तकलाल का मीनारा है, करबला वो मुकाम है जहां से इंसानियत सुरखरू होकर निकलती है, बंदे हक के लिए मैदान करबला में लश्कर आदा की चमकती हुई शमशीरें नजारे ईद से कम ना थीं। दुनिया की कोई भी तहजीब, दुनिया की कोई भी तारीख मैदान करबला जैसा कोई एक सानहा पेश करने से कासिर है। तारीख दे रही है ये आवाज़ दम बदम, दश्ते सबातो अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सब्रे मसीहो जुर्रते सुकरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतिशे बद्रो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गरामी हुसैन है। मदीना मुनव्वरा से निकला हुआ पाक नफूस का एक काफिला, जिसमें नवासे रसूल, अहले बैत और चंद रफीकाने सफर थे, मक्का को अलविदा कहा और ये काफिला सूए करबला रवाना हुआ। अंदाजा था इस बात का आगाज़े सफर से, अशकों की तरह आले नबी निकले थे घर से, दश्ते बला में असगरो अकबर हुसैन हैं, जो गौर से देखो तो 72 हुसैन हैं। करबला ना तो जंग थी न मुकाबला और न ही कोई मारका आराई, क्योंकि यहाँ ना दौलत व हशमत की तलाश थी न ही शहनशाहियत की जस्तजू, बल्कि एक तरीक़ा मज़ाहमत था एक ऐसे ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान के खिलाफ जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा दीन को मस्क कर रहा था। यजीद के तख्त नशीन होते ही हलाल व हराम का फ़र्क मिटने लगा। हुसैन इब्ने अली के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि शरीयत फरमाने शाही के ताबे हो या हाकिम वक्त शरीयत का पाबंद हो। इमाम हुसैन का मुख्तसर सा काफिला सन 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को सरजमीन करबला पर वारिद हुआ। इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से जंग के इरादे से रवाना नहीं हुए थे और न ही आपने सहाबा इकराम और ताबईन को अपने साथ महाज पर चलने की दावत दी थी। जब करबला में दाखले शाहे दी हुआ, दश्ते बला नमूने खुल्दे बरी हुआ, पाया फरोगे नैयरे दी के जहूर से, जंगल को चांद लग गया जहरा के नूर से, उतरो मुसाफिरों के सफर हो चुका तमाम, कूच अब ना होगा हश्र तक है यही मकाम, मक्तल यही जमी है यही मशहद इमाम, ऊंटों से बार उतार के बर्पा करो खयाम, बिस्तर लगाओ शौक से इस अर्ज़े पाक पर, छिड़का हुआ है आबे बका यहाँ की खाक पर। काफिले हुसैनी के हर फर्द के दिल में शौक़े शहादत का जज्बा मौजन था, हर एक

0: का मकसद साफ था कि किस तरह दीन मोहम्मदी के गर्दालूद चेहरे को अपने खून से धोया जाए। 5 मुहर्रमुल हराम तक मैदान करबला जालिम यजीद की फौजों से भर गया। इमाम हुसैन और उनके साथियों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। 7वीं मुहर्रम से दरियाए फुरात पर पहरा बिठा दिया गया। किसके लिए लगाए हैं पहरे फुरात पर, मौजें सर पटक रही हैं नहरे फुरात पर, पानी तड़प रहा था निगाहे हुसैन को, वो एक नजर ही डाल दें लहरे फुरात पर। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन पर बैयत के लिए दबाव बढ़ने लगा, लेकिन लब पे जो इनकार पहले था वो अब भी था। मुश्किलात और शोरिशों का दौर तेज हो गया, लेकिन रजाए हक के मतवालों के दिल जज्बे ईमानी से पुरनूर रोशन और ताबनाक थे।
1: ज़ुल्म हद से जब

10 मुहर्रम الحرام को सुबह शहादत नाजिल हुई। शौक शहादत रखने वालों का जोश हजारहा लश्कर यजीदी से टकराने को तैयार था। एक तरफ हक परस्तों की जमात है तो दूसरी तरफ फरेबियों और मक्कारों का लश्कर है। मैदान करबला में हजरत अली अकबर ने अजान फज्र कहा, नमाजी सफारा हो गए। इमाम हुसैन ने नमाज से फारिग होकर लश्कर आदम

को खिताब किया, तुम में से हर एक मुझसे वाकिफ है, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली हूँ। मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की, मैंने कभी नमाज कजा नहीं की, मैंने कभी मोमिन का कत्ल नहीं किया। तुम कैसे उम्मती हो जो वाले रसूल के खानदान को कत्ल करना चाहते हो? आखिर में इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुज्जत तमाम किया, कल रोजे महशर कोई उज्र ना पेश कर सकेगा। अम्र बिन साद ने पहला तीर फेंक कर जंग का ऐलान कर दिया। हजरत हुर, हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी, हजरत मुस्लिम बिन औसजा, हजरत जुबैर बिन कैन एक एक करके जाम शहादत नोश फरमाते रहे। अब अलमदारे काफिले हुसैनी हजरत अब्बास ने मशक सकीना को कमर में बांधा, इमाम हुसैन से इजाजत मांगी। इमाम ने फरमाया, तुम मेरे अलमदार हो। जनाब अब्बास के लबों से जुमला अदा हुआ, अब वो लश्कर ना रहा जिसका मैं अलमदार था। सक्काए अहले बैत ने दरियाए फुरात का रुख किया, नहरे फुरात पर हजरत अब्बास अलमदार भी शहीद कर दिए गए। इधर मैदान रज़्म में हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली की शहादत के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील के तीनों भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अकील, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील और हजरत जाफर बिन अकील ने भी जामे शहादत नोश किया। फिर हजरत कासिम बिन हजरत हसन चचा हजरत इमाम हुसैन से इजाजत तलब करके मैदान रज़्म को बढ़े। तीन दिनों के भूखे प्यासे, करबला के तपते हुए रेगजार, शिद्दत की गर्मी, मगर इब्ने हसन ने जंग का रुख पलट दिया। पहले अरज़क के चारों बेटों, फिर अरज़क को वासिले जहन्नम किया। अचानक इब्ने साद ने कई दस्तों को एक साथ हमलावर किया, सैकड़ों से लड़ते हुए हजरत कासिम भी शहीद हो गए। 18 साल के कड़ियल जवान शबी रसूल हजरत अली अकबर ने मैदान जंग का रुख किया। आपकी तलवार दुश्मनों के सर कलम करती गई, दुश्मनों ने नेजे से वार किया, आपने भी जामे शहादत नोश फरमाया। जवान अली अकबर का लाशा देखकर खयाम हुसैनी में कोहराम मच गया। इमाम ने सब्र की तलकीन की और जमीन को खिताब करते हुए फरमाया, तेगों से पाश पाश है सब जिस्म नाजनी, रखियो बाहतियात इसे दामन में ऐ जमी। 18 साल की है ये दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन।

एक एक करके गुलशन जहरा के फूल मैदान कारजार में काम आते गए। अब तन्हा इमाम हुसैन हैं और हजारों का लश्कर आदा। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तन्हा हुसैन हैं और हजारों का लश्कर, इब्ने हैदर की तलवार हजारों पर भारी थी, जिधर का रुख किया सफ की सफ तहे तेक कर दिया। दुश्मनों ने कई सिम से एक साथ तीरों की बौछार कर दी, तन्हा जिसमें नाजनी और हजारों तीर, जख्मों की ताब ना लाकर इमाम हुसैन ने मैदान-ए-करबला में आखिरी सजदा

0: उन्हें इमाम हुसैन से एक नई तारीख रकम हो चुकी थी, हक व बातिल की बाजी तमाम हुई। अंजाम मुबारक हो अजीजो, बातिल हुआ नाकाम, मुबारक हो अजीजो। इमाम हुसैन ने सर दे दिया मगर बैयत नहीं की। नवासे रसूल खुदा ने क़यामत तक के लिए जबरो इस्तबदाद की जड़ें काट दी। हुसैन इब्न अली की मौजे खून ने एक ताज़ा चमन ईजाद किया जो खून मजलूम से आज भी सरसब्ज़ो शादाब है। ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं, फैसले जंग के तलवारों से कब होते हैं। झूठ तादाद में कितना ही ज्यादा हो सलीम, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। मेराज जिंदगी है शहादत हुसैन की। सामईन, अभी आप ये तमसीली प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर और आवाज़ थी मोहम्मद फर्रुख जमाल की, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं तमन्ना बानो। आइए इनकी आवाज में सुनते हैं कुछ गजल। पहली गजल कतिल शफाई की आवाज रचना।

0: कतिल शिफाई की रचना सुन रहे थे तमन्ना बानो की आवाज में। कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं पहले ये संदेश।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: और आइए तमन्ना बानो की आवाज में सुनते हैं जिया अंसारी की ये रचना।

जी अंसारी के लिखे गजल को गुनगुना रही थी तमन्ना बानो। और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:59 और 47 सेकंड हो रहे हैं। कुछ पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा।

0: समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की।

0: बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिगेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेतरी तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती सुशासन और सेवा के लिए शाश्वत प्रेरणा बनी रहेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र प्रस्तुत है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते हैं।

और लता मंगेशकर को एक बार फिर सुनते हैं फिल्म तुम्हारे लिए में। बोल नक्शलाइलपुरी की हैं और संगीत जयदेव का।

0: ये गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: है उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्रियों
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में वृक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में अमूल्य योगदान दें। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है समाचारों का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: और अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान

0: के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National
3: Security. आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग इस अंतराल के बाद
4: है। उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
8: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www

0: www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज के कलाकार थे भोला यादव और साथी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, ये जिंदगी का फलसफा है बॉस। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता।

0: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की, और डायरेक्ट टू हार्ट
2: ये सारे चैनल्स होंगे।

0: फ्री टू एयर यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: गीतांजलि आप सुन रहे हैं दीपशिखा सिंह के साथ। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहे, जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है।

जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है।

ज़िंदगी में दो चीज़ें हमेशा टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक ही बार में मर जाता है, पर किसी का साथ छूटने से इंसान पल पल मरता है। अपना ये साथ बना रहे, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की अनुमति दीजिए दीपशिखा सिंह को। नमस्कार। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओ कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की

सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज़।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे।

0: मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय,

0: कि आपको ज्ञात है मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
1: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
1: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।

0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सुहाने।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे शक्ति फिल्म से ये गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सुहाने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, सुगम संगीत सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुँचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की फनकार हैं तमन्ना बानो।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की फनकार थीं तमन्ना बानो। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त हो चला का है इलाकाई खबरों का।
1: है थोड़ी ही देर में आप इलाकाई खबरें सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन और खसूसी तहकीकाती टीम SIT ने कल मुश्तरका तौर पर लखनऊ के अलीगंज आतिशजदगी के जायवकू का मुआयना किया। जायवकू से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद SIT ने KGMU का भी दौरा किया और जख्मियों से बातचीत भी की। फॉरेंसिक टीम ने मजीद तफ्तीश और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। नामा निगारों से बातचीत करते हुए लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार ने कहा,
3: हमें कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
4: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2: वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई SIT में महकमा सकाफत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात और लखनऊ के ADG जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। इधर लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किया है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के वाकये में जान गंवाने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाब्ते को मजबूत बनाने और गैर कानूनी इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत भर में फायर सेफ्टी के इकदामात का मिशन मोड में मुआयना किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि किसी भी इमारत को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गई है। तहखाने में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या किसी दूसरी तजारती सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग इदारों का सर्वे करने की हिदायत दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तलबा की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना शामिल है। इस दौरान एक खसूसी तहकीकती टीम ने कल लखनऊ में जायवकू का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, बस्ती, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा और दीगर अजला

0: जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मानसून के मुमकिन मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है। कल नई दिल्ली में सहाफियों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा,
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का अहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे, ITA ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौजूआत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और कारोबारी मौके की नुमाइश की जाएगी और सरमायाकारों को रियासत में दस्तयाब मौके के बारे में आगाह किया जाएगा। UPTET 2026 का इम्तिहान अगले माह 2 और 4 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि ये इम्तिहान रियासत भर के 60 अज़ला के 955 मराकज़ पर मुनक़िद किया जाएगा। एडमिट कार्ड 30 जून से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे। और महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि मशरकी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि मौसम का कोई फाल निज़ाम न होने की वजह से मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश में 28 जून से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम सेहत की बातें। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता से वनीश कुमार द्विवेदी की बातचीत। विषय है गोरखपुर एम्स और इसका महत्व।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष द्विवेदी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल विभा दत्ता जी, जो सेना मेडल प्राप्त की हैं और एम्स में डायरेक्टर भी हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
3: एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में आप डायरेक्टर हैं, जब आप अपने आप को देखती हैं कि महिला भी आपको आधी आबादी आपको कॉपी करना चाहती है, आप जैसा बनना चाहती है, तो जब आप शुरुआती अनुभव के बारे में विस्तार से बताएंगी कि आपका अनुभव कैसा था, आपका जीवन परिचय कैसा था, आप किस बैकग्राउंड से आई हैं, तो संभवतः उनको बल मिलेगा, संबल मिलेगा। शुरुआती या बचपन का जीवन आपका कैसा था, वो थोड़ा सा श्रोताओं के साथ साझा कीजिए।
4: देखिए, मेरी तो जो पढ़ाई हुई है वो हॉस्टल में हुई है, थोड़ा बहुत ओग्रोव स्कूल मसूरी में हुई, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो रेलवेज में थे, और उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में, हमारे फादर आए ट्रांसफ़र होके, उसके बाद लगभग क्लास 8 से मैंने अपनी पढ़ाई भारतीय विद्या भवन दिल्ली में करी है। पूरा मैंने अपना क्लास 11th हमारे टाइम होता था, और उसके बाद थोड़ा सा प्री मेड होता था जो कि मैंने गार्गी कॉलेज से करी है, और उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और एडमिशन मेरे को मिला यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, और वहाँ से मैंने फिर अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त करी। और उसके बाद सौभाग्य से मेरा रिश्ता तय हुआ एक

आर्मी ऑफिसर के साथ, और सो फिर मैंने भी आर्मी ही ज्वाइन करी, क्योंकि मेरे को बताया गया कि दोनों अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो इकट्ठा रहने के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस करके मेरा पूरा करियर लगभग 35 साल तक मैं आर्मी में ही मैंने काम किया है एज अ डॉक्टर। और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आर्मी जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बहुत तौर तरीके ज़िंदगी के सीखने को भी मिलते हैं और सिखाए भी जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बताऊंगी कि फ़ौज में खाने का तरीका तक सिखाया जाता है, कैसे आप चलोगे, अगर आपका सीनियर आपके साथ चल रहा है तो आप अपने सीनियर के बाईं तरफ रहोगे, ये ऐसा रूल है, चलने तक का रूल है। हमारे यहाँ पूजा भी होती है तो वो धर्म स्थल पे होती है, जिसमें कि गुरुद्वारा भी होता है, मंदिर भी होता है और मस्जिद भी होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि कई बार हमारे जो मंदिर का पुजारी होता है, अगर बाई चांस जो पुजारी है वो छुट्टी चला गया, तो किसी मुस्लिम को भी अगर ये बोला जाए कि आप मंदिर की भी साफ़ सफाई पूरी देखोगे, तो बिना किसी हिचक के सब काम करते हैं हमारे यहाँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आर्मी में आपको अपने मेरिट पे ही आगे बढ़ने को मौका मिलता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है और कुछ नहीं है, बस आपको अपनी काबिलियत दिखानी है, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। और जो एक्सपीरियंस आर्मी का है वो बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था, आई डोंट रिग्रेट इट। और मैं कहना चाहूँगी लड़कियों के लिए तो फ़ौज बहुत ही अच्छी है, और अब तो फ़ौज में सिग्नल्स में, लॉ में, और भी हैं ब्रांचेस जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस हैं जिसमें आजकल लड़कियां आ रही हैं, अब तो सिविल मिलिट्री पुलिस में भी लड़कियों को ले लेते हैं, तो लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर मैं रात को भी हॉस्पिटल में चली जाऊं अकेले, मैं बिल्कुल सेफ हूं, मेरे को लोग सलूट करेंगे और मैं बिल्कुल बेहिचक कहीं भी जा सकती हूं, बिल्कुल सेफ है फॉर अ लेडी, इट्स अ वेरी सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है हमेशा लेडीज़ के लिए। अगर आप देखेंगे, मैं सीनियर ऑफिसर, मैं मान लो कैप्टन हूँ, जूनियर ऑफिसर हूँ, और किसी सीनियर ऑफिसर के कमरे में गई तो सीनियर ऑफिसर खड़ा होगा और फिर मेरे को बैठाएगा, फिर बैठेंगे, मतलब इतनी हमें रिस्पेक्ट मिलती है लेडीज़ को। तो मैं तो लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है इन सब ब्रांचेस में, तो आप फौज को ज़रूर ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। खैर, मैंने अपने 35 साल फौज में गुजारे हैं और इसमें मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी पैथोलॉजी की, मैंने MD पैथोलॉजी करी AFMC से पूना में, और उसके बाद मैंने PhD भी करी हुई है पैथोलॉजी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से। और मेरे को मौका मिला कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनी पैथोलॉजी की AFMC में भी, और आर्मी हॉस्पिटल RNR, जो कि ये दो बड़े हॉस्पिटल्स हैं आर्मी मेडिकल सर्विसेज के। और यहाँ पर भी मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला अपने सब्जेक्ट का, और काफ़ी मौका दिया मेरे को फौज ने कि मैं अपना करियर बढ़ा सकूं और सीख सकूं, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूं जो मैं कर सकी। और उसके बाद मेरे को लास्ट ब्रिगेडियर के ऊपर जो अपॉइंटमेंट मिला है एज अ मेजर जनरल, मैं प्रमोट हुई। और ये बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे ऊपर रैंक बढ़ता जाता है उतनी ही कठिनाई होती है आपके सेलेक्शन में, क्योंकि लोग अब कम होते जाते हैं और सब अच्छे होते हैं। ब्रिगेडियर्स में मेजर जनरल चुना जाता है, अगर 100 ब्रिगेडियर्स होंगे तो उसमें सिर्फ 30 मेजर जनरल चुने जाएंगे, ये रेशियो है। तो काफ़ी कुछ कम लोग ही चुने जाते हैं और मेजर जनरल, और इसके ऊपर सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट जो हमारे यहाँ होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, वो तो और भी कम, हार्डली 6-7। मेरे को बड़ा गर्व है कि मैं मेजर जनरल तक पहुँच गई, पता नहीं कैसे पहुँची, आई थिंक मैंने अच्छा कुछ करा होगा या मैं करती गई, पता नहीं चला। खैर, मैंने कमांड करा है कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, जो कि एक 800 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और वहाँ पर भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें फौजी भी होते हैं, सिविलियन स्टाफ भी होता है। तो जो एक्सपीरियंस वहाँ पे थे वो मेरे अब इस टाइम जब मैं एम्स में हूँ तो मेरा इसमें बहुत एक्सपीरियंस काम आ रहा है। और जब मैं रिटायर हुई थी

0: खुद से एज अ मेजर जनरल मेरे को सेना मेडल भी मिला अपने काम की वजह से। और जब मैं रिटायर हुई हूँ करीब 2018 में मैं रिटायर हुई हूँ, उसी साल मैं अप्रैल में रिटायर हुई हूँ, अक्टूबर में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्टर एम्स नागपुर बनने की। मैं पहली डायरेक्टर बनी एम्स नागपुर की और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने एम्स नागपुर को अपने आप अपनी टीम के साथ खड़ा करा है और आज के दिन में एम्स नागपुर का नाम लिया जाता है कि अगर एम्स हो तो ऐसा हो। ये मेरे को सुनने को अभी भी मिलता है। मैंने वहाँ पे 4.5 साल काम किया है, पूरा सेटअप करा था वहाँ पे, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, जितनी सर्विसेज होती हैं, किचन वगैरह जो हॉस्पिटल में नॉर्मली सर्विसेज होती हैं, लॉन्ड्री वगैरह वगैरह, सब पूरा हॉस्पिटल मैंने खुद वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से मैंने बनाया है। और उसके बाद मैं रिटायर हुई वहाँ से 23 में। 23 के बाद एक साल मैंने एक्चुअली बहुत मौज मस्ती करी कि अब उम्र हो गई, बहुत कर लिया। लेकिन फिर से मेरे को 25 में लास्ट ईयर मेरे को फिर एक कॉल आया कि डायरेक्टर एम्स गोरखपुर के लिए, तो इसको भी मैंने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने इसको फरवरी 2025 में एम्स गोरखपुर को ज्वाइन करा है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको ऊपर उठाऊं और इसका नाम और अच्छा बनाऊं।
1: मैडम, कोई गीत संगीत आप जो सुनती रहती हो, गुनगुनाती रहती हो, आप बताएं तो उसको श्रोताओं को साझा किया जाए, सुनवाया जाए।
0: एक तो ये है कि रहे ना रहे हम,

0: एम्स की चूंकि प्रतिष्ठा चिकित्सा जगत में बहुत है
1: जी
0: और आप उसकी निदेशक हैं,
1: जी
0: और गोरखपुर जैसा क्षेत्र जो कि पूर्वांचल का प्रमुख शहर माना जाता है, यहाँ पे लोगों का आना जाना, जन दबाव, जन घनत्व बहुत है, तो आप जब एम्स की निदेशक हैं तो क्या क्या व्यवहारिक समस्याएं आपको रोजाना मतलब दो चार होना पड़ता है?
1: मैं कहना चाहूंगी एम्स गोरखपुर लगभग 5-6 साल से यहाँ पर कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं रहा है, थोड़ी लीडरशिप की कमी है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सेट करना पड़ा सिस्टम। और इसमें मैं कह रही हूँ कि मेरा आर्मी का एक्सपीरियंस बहुत काम आया, और जो आर्मी की जो डिसिप्लिन होती है वो मैं कुछ कुछ हद तक जो मैं यहाँ पे ला सकती हूँ, जैसे कि जो हमें सिखाया जाता है डिसिप्लिन होता है आदेश का पालन, यानी कि पंक्चुअलिटी है। अगर ओपीडी 9 बजे शुरू होनी है तो 9 बजे शुरू हो जाएगी। अब कभी नहीं मिलेगा आपको एम्स में कि 9 बजे ओपीडी नहीं हो शुरू हो रही है या ऑपरेशन जो है वो 9 बजे नहीं शुरू हुआ। ये तो पंक्चुअलिटी यहाँ पे सीखना, दिस इज डिसिप्लिन। जैसे कि आप हमारे अस्पताल में आप कभी आएंगे तो देखेंगे कि मैं जब शुरू में आई थी तो लोग गाड़ियां कहीं भी पार्क कर देते थे, तो इससे क्या होता था जो एम्बुलेंस है जिसमें मरीज को एकदम से ज़रूरत है अभी मदद, वो घुसने में उसको तकलीफ होती थी। कई बार गाड़ियां पार्क्ड हैं, ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, ये गलत है। तो अब हमने पार्किंग का सिस्टम बिल्कुल टाइट कर दिया है और गार्ड्स को ये निर्देश हैं कि कहीं भी गाड़ी जिसकी मर्जी इधर उधर नहीं करेगा, अनलेस किसी को इमरजेंसी है, कोई पेशेंट लेके आया है वगैरह वगैरह, उसको देख के सिचुएशन को देख के हम रोक सकते हैं गाड़ी इधर उधर। लेकिन ज्यादातर की गाड़ियां घंटों खड़ी हुई हैं, आधे घंटे से इधर उधर सड़कों पे खड़ी हैं, ये आपको एम्स में अब नहीं मिलेगा। हम पब्लिक को इनफैक्ट बताना चाहते हैं कि हमें कई बार व्हील्स भी उनकी लॉक करनी पड़ती हैं लोगों को समझाने के लिए कि पार्किंग की जगह पे ही गाड़ी खड़ी करिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखा है कि एक पेशेंट आएगा उसके साथ 5 लोग आएंगे, और फिर क्या होता है वो कहीं पर भी बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि गंदगी फैलती है, मक्खियाँ आती हैं। अब ये अस्पताल में फिर अंदर बिल्डिंग में भी घुसेंगी, तो हमने ये भी मना कर रखा है कि खाना आपको खाना है तो आप कैंटीन चले जाइए और वहाँ पर खा लीजिए। हेलमेट लोगों को पहनने की, जो भी 2-व्हीलर्स हैं हेलमेट के बिना नहीं दिखेंगे अस्पताल के अंदर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो हमें फ़ौज में सिखाया जाता है कि आप जो भी करें बिल्कुल अपनी शिद्दत के साथ करें और ईमानदारी से करें, देश प्रेम के साथ अपना कार्य करें। और मैं सोचती हूं कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत शायद मैं कुछ फर्क कर पा रही हूं।
0: नहीं, चेंज तो आया है देखने में। मैडम, एक सवाल ये है कि जब आप आज से 30 या 40 साल पहले देखती हैं, समय भी आप चिकित्सा जगत में आने की कोशिश कर रही थी और फिर आर्मी में आई, फिर सेना मेडल मिला, तो ये राह कितना कठिन या कितना आसान था? आज के संदर्भ में अगर लोग कहते हैं कि बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, तब का दौर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगी तो कैसे बताएंगी लोगों को ताकि प्रेरणा मिले?
1: हमारे टाइम में एक तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लोग तो जाने को, डॉक्टर बनने को तो बहुत ही लोग, मतलब कंपटीशन तो रहता ही रहता था। वो मेरे ख्याल से अगर आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोशिश करते रहिए, और कई बार फेलियर तो होता ही होता है, ये तो है ही, लेकिन

फेलियर आपको होता है उसके बाद जो सक्सेस का मजा आता है ना, वो आप किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। और जब मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली उसके बाद तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है कि फौज एक बार आप देख लो तो आपको बाहर जाने का मन नहीं करेगा। फिर बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, तकलीफें उधर भी हैं

0: बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। और बाकी तो ऐसा है कि अब टाइम्स थोड़े चेंज हो गए हैं पहले के ज़माने में, अब आईटी, एआई और ये सब चीज़ें हमारे टाइम में नहीं होती थी।
1: एम्स जब आप आई गोरखपुर में, तब का एम्स और अब का एम्स और अगले 10 सालों का एम्स, आपका जो रोड मैप है वो कैसा होगा एम्स, आपके सपनों का एम्स?
0: मेरे पास तो यहाँ पर 3 साल ही है काम करने को
1: जी,
0: पर मैं चाहूंगी कि जितना मैं कर सकूं, मेरा तो एम है कि एम्स यहाँ पे एक ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल हब बने, ऐसी जगह बने जहाँ पे लोग कहें कि क्वालिटी केयर यहाँ पर ही होती है, लोगों को स्पेशली गरीबों को अच्छा इलाज मिले और सस्ता मिले। ये तो है ही, हमारी एम यही है, एम्स इसी वजह से बनाए गए थे कि गरीबों का इलाज हो और सस्ता इलाज हो, अच्छा इलाज हो। इसके अलावा हम लोग एम्स में शिक्षा भी देते हैं, तो जो हम बच्चे यहाँ से पढ़ा रहे हैं, जो नर्सें हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और उनको बना रहे हैं नर्स और डॉक्टर्स, ये देश में जाएं और अपनी पूरी जी जान से स्वास्थ्य में सेवा करें और इनका नाम हो और इसमें एम्स का भी नाम हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स हम क्रिएट करें। और रास्ता तो बहुत ही लंबा है, हमें अपने जो ट्रीटमेंट हैं उसको हमें इम्प्रूव करना है, हमारे जो जांचें होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये हमें और अच्छे करने चाहिए। एआई आ रहा है, अब हमें एआई की सुविधा अपने एम्स में लानी चाहिए। इसके अलावा बाईपास ट्रांसप्लांट्स और जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं और बढ़िया आने चाहिए, तो इससे एम्स का और नाम होएगा और इसके अलावा हम अपनी जो जनता है उनको हम अच्छा इलाज दे पाएंगे।
1: मैडम, एम्स में जब कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्ग दिखाने जाता है, तो सबसे पहली उसकी दिक्कत ये होती है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है या पर्ची जिसको कहते हैं, वो कटाने में मतलब बहुत दिक्कत आती है, भर जाता है। आपने हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन फिर भी दिक्कतें जाती हैं, तो इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी अगर हो जिससे श्रोताओं को लाभ मिल सके?
0: मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो इसमें ज्यादा फायदा है आपका, क्योंकि ऑफलाइन में तो फिर लाइन बनती है। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ लगभग 4,500 से लेके 5,000 मरीज रोज आते हैं, हर एक डॉक्टर लगभग 150 से 200 मरीज देख रहा है एक दिन में, और ये बहुत ज़्यादा है। अगर एक डॉक्टर मरीजों को अच्छे से देखना चाहे तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने 200 का कट ऑफ बना दिया है, कहीं कहीं पर 150 का कट ऑफ बना दिया है। डॉक्टर ठीक से मरीज देख नहीं पाएगा अगर आप इतना ज़्यादा लोड एक डॉक्टर पर लगाएंगे, तो इसलिए हमने ये कट ऑफ बनाया है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है अगर कोई अलग से, कोई ज़्यादा बीमार है, किसी को ज़्यादा तकलीफ है, तो अटेंडेंट्स जो बाहर बैठे रहते हैं ओपीडी में, आप उनको बता सकते हो तो वो पहले आपको दिखवा देंगे, ये हर जगह हमने बोला हुआ है। और उसके अलावा भी मैं राउंड्स पे जाती हूँ, कई बार मैं देखती हूँ कि कोई बूढ़ा आदमी लाइन में पीछे खड़ा हुआ है या कोई बीमार है, अकेला है, उसको मैं आगे कर देती हूँ। और अटेंडेंट्स जब भी ओपीडी में बैठे होते हैं वहाँ पर भी मैं चेक करती रहती हूँ, और ये मेरे निर्देश हैं कि जब भी आपको कोई लगे बेचारा कोई है तो उसको आगे करिए।
1: एम्स चूंकि हर कोई आना चाहता है और भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, तो आप जैसे कोई किसी को कुछ सुझाव देना हो कि कैसे रजिस्ट्रेशन के बाद कोई ग्रीवांस अगर है किसी का, कोई भी ग्रीवांस हो सकता है, जनरली बहुत भीड़ होती है तो ग्रीवांस भी रहता है, उसको आप कैसे रिड्रेसल करती हैं, क्या मैकेनिज्म है?
0: ज़्यादातर तो मेरे पास ईमेल्स आ जाती हैं और मैं ईमेल्स का मैं बराबर रिप्लाई करती हूँ, और अगर फ़ोन नंबर होता है और मेरे को अगर लगता है कि मैं फ़ोन करके ही सुलझा सकती हूँ तो मैं फ़ोन भी कर देती हूँ। इसके अलावा मैं जब बैठती हूँ ऑफिस में तो कई लोग मेरे पास आते हैं और मैं सुलझाने की कोशिश करती हूँ, फ़ोन आते हैं मेरे पास, लोग फ़ोन भी कर देते हैं तब भी मैं सुलझाने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा मैंने ओपीडी में अपना कमरा बनाया हुआ है, वहाँ पर भी बैठने की कोशिश करती हूँ, पर वो ये होता है कि मैं राउंड पे जाती हूँ फिर वो इतना लंबा राउंड हो जाता है कि फिर मेरे को बैठने का मौका नहीं मिल पाता है, मेरे को ऑफिस ही आना पड़ता है क्योंकि ऑफिस में भी काम होते हैं जो फिर डिले हो जाते हैं। लेकिन मैं अप्रोचेबल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे से आप बराबर ईमेल्स में आप लिख सकते हैं, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी।
1: मैडम साधारण तौर पे अगर बताना हो जनरल समझ के लिए।

0: कि कौन
1: जी
0: कौन सा डिपार्टमेंट आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा और होना चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट वर्किंग में है, मतलब क्या क्या वो
1: सुविधाएं हैं,
0: स्पेशलाइजेशन है?
1: क्या क्या सुविधाएं हैं।
0: हाँ
1: तो ये हमने ऑलरेडी वहाँ पर आप देखेंगे ओपीडी में हमने दो बड़े बड़े टीवी लगा रखे हैं, और उसमें से एक टीवी है उसमें सब आपको डॉक्टर्स के नाम, क्या स्पेशलिस्ट हैं, कब उनके दिन हैं, क्या टाइम है, सब आता रहता है। इसके अलावा जो दूसरा टीवी है उसमें हम नॉर्मली यही सब दिखाते रहते हैं, जैसे कि पानी आप कैसे बचाएं, बिजली ना वेस्ट करें, किसी दलाल के चक्कर में ना आए, कहीं पैसा ना फालतू देंगे, सब इंस्ट्रक्शंस जो मतलब सोशल जो मैटर्स हैं पब्लिक के उसको देने के लिए हमने दूसरे टीवी में चला रखा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मैडम, चलते चलते कोई गीत आप बताएं तो उसको श्रोताओं को सुनवाया जाए।
1: रुक जाना नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मेजर जनरल विभा दत्ता से मनीष कुमार द्विवेदी की बातचीत। विषय था गोरखपुर एम्स और इसका महत्व। इसी के साथ कार्यक्रम सेहत की बातें अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: विनम्र व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, पराजित वे होते हैं जो विनम्रता स्वीकार नहीं करते। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी में आइए सुनते हैं डॉक्टर रामचेत चौधरी से वेद प्रकाश श्रीवास्तव की बातचीत। विषय है जैविक खेती।
4: आज अपने बैठकी में जैविक खेती और उसे होए वाले लाभ के विषय में चर्चा कही जाई। आज के बैठकी में आमंत्रित हमें वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरसी चौधरी जी, आपके अपने बैठकी में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, एक समय रहे अपने देश में जब फर्टिलाइजर या रासायनिक खाद नहीं आवत रहे, तब भी जानकारी मिलेला कि लोग गोबर के खाद से या पेड़ पौधा जोन गलत उलत रहने सड़त रहने उनसे आदमी खेत में प्रयोग करके फसल पैदा करत रहे, चाहे ओकर पैदावार कम रहे चाहे अधिक रहे। लेकिन आज के दौर में जब कुछ साल मतलब ओकर सही समय तो नहीं बतावल जा सकेला, लेकिन जब से रासायनिक खाद के प्रचलन भइल तब से धीरे धीरे पैदावार तो बढ़ल, लेकिन स्वास्थ्य पर सुनाई देला एकर विश्लेषण होला तो शरीर और स्वास्थ्य पे एकर असर पड़ल। लेकिन आज के नया दौर में जैविक खेती और उसे होए वाला लाभ जगह जगह चाहे गोष्ठी सेमिनार या आम बैठकी किसान लोगन के बीच में हॉस्पिटल में आम लोगन के जनमानस में चर्चा के विषय बनल बा कि अब समय बा कि खाली जैविक खेती से पैदा कैल साग सब्जी और अनाज पानी खाई जाए, एकरे काहे आज ही जरूरी भइल बा जैविक खेती, आप तनी साय के बताएं।
5: बड़ा अच्छा एक मुद्दा ये उठा है जैविक खेती वाला। आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, पहले लोग समझ लें कि आवश्यकता इसकी पड़ी क्यों। शुरुआती दौर पर जब ये मानव निर्मित रसायन, चाहे वो खाद के रूप में हो चाहे वो कीड़ों और बीमारियों को भगाने के रूप में हो, जब से ये आए तो जो पैदावार तो बढ़ी, क्योंकि शुरू में आवश्यकता थी पैदावार बढ़ाने की कि लोग भूखे न रहें, तो पैदावार तो बढ़ी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये भी सिर्फ 70 साल की बात है अपने देश में। तो 70 साल तक जो है जितनी खेती होती थी वो सारी की सारी जैविक थी।
4: जी,
5: तो जैविक कोई नई चीज नहीं है, जैविक खेती ही अपने वहाँ होती रही है। लेकिन जब करीब 70 साल पहले जब ये नए नए खाद यूरिया डाई, सबसे पहला तो यूरिया आया था, अमोनियम सल्फेट डाई, ये आने लग गए कीड़े बीमारियों को मारने के लिए या भगाने के लिए तमाम दवाइयां आने लग गई, तो फायदा तो बहुत हुआ और तो लोगों को भरपेट भोजन मिलने लग गया
4: और झुकाव हो गए रासायनिक खाद।
5: और अपने देश में भी हम लोग खुद पैदा करने लग गए इतना कि हम आज दुनिया में भेज रहे हैं, चाहे वो चावल हो चाहे वो गेहूं हो चाहे फल हो,
4: निर्यात कर रहे हैं।
5: जी जी जी। लेकिन उसका दुष्परिणाम भी सामने आने लग गया। पहला दुष्परिणाम लोगों को देखने को मिला कि बीमारियां बढ़ गई, कैंसर खास तौर से, कैंसर घर घर में कैंसर। हम अपने बचपन की बात करें तो हम अपने बचपन में भी तालाब का पानी कुएं का पानी ये पी लिया करते थे, लेकिन अब जो नल लगा हुआ घर के सामने नल का भी पानी हम पीने से कतराते हैं। और आपने देखा होगा कि जब बारात आती है कहीं कुछ आता है तो शहर से प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रमों में भर के वो जाता है पानी पीने के लिए। तो बताइए आखिर ये किसने पानी को जहर बना दिया। तो ये जहर बनाने में कुछ ऐसी बात हुई कि सोच बढ़ी कि आखिर ये सारा का सारा जहर इसी नाते आया है कि ये तरह तरह के रसायन खेतों में डलने लग गए, तो कुएं का पानी अब जहर हो गया, पीना बंद हो गया। तो ये दुष्परिणाम जब सामने आया तो सब ने सोचा कि भाई कुछ तो किया जाए इसके लिए। और एक योजना पारंपरिक कृषि विकास योजना, मैंने जो परंपरा से खेती होती थी वही खेती फिर वापस लाई जा रही। तो इसमें अब देखिए न तो यूरिया न तो डाई और न तो ये सब जो जहर हैं ये इस्तेमाल होते हैं। हाँ, पौधे को खुराक चाहिए, खुराक देने के लिए कंपोस्ट है, वर्मिंग कंपोस्ट है और तमाम तरीके हैं जो गाय के मूत्र से बनाए जाते हैं।
4: हाँ, हाँ, हाँ।
5: और गाय के गोबर से बनाए जाते हैं।
4: लेकिन जो भारत सरकार की योजना बताई

0: यही है
1: ये
0: इसी में,
1: मतलब जिला स्तर से गांव तक भी
0: ये देखिए पूरे देश में है।
1: जी जी।
0: और अभी इस जो नई योजना है तीसरा चरण इसका शुरू हुआ है PKVY का या पारंपरिक कृषि विकास योजना का, इसमें 75 में से 54 जिले अभी चयनित हैं, हर जिले में ब्लॉक चयनित हैं, हर ब्लॉक में गांव चयनित हैं, हर गांव में परिवार चयनित है। तो इस योजना के अंतर्गत ये बहुत अच्छी योजना है, किसानों का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि जो कंपनियां ये जहर बनाती थी वो किसानों के दिल में भय पैदा करती है कि जहां आपने ये सब डालना बंद किया यूरिया डाई या केमिकल, वहां आपकी पैदावार गिरेगी, जो कि मिथ्या है,
1: उपज कम हो जाएगी।
0: हाँ, उपज कम हो
1: जाएगी, अंदेशा दिखा देगा।
0: हाँ, तो इसलिए लोग डरने लग गए। लेकिन अब जो इस योजना के अंतर्गत किसान के खेत पर एक एकड़ में प्रदर्शन दिया जाता है, इस योजना के अंतर्गत उसमें किसान को बीज और जो तरीका है जीवामृत या घन जीवामृत या निमाश्र सब बनाने के लिए वो सब सिखाया जाता है।
1: तो जैविक खाद बनावे के ट्रेनिंग जो उनका प्रशिक्षण उनके गांव में जाके उनके खेत में ही
0: वही दिया जाता है। और हर एक किसान एक एकड़ खेत अपना चुनता है, उसके चारों ओर मोटी मेड़ बनाता है कि बगल वाले खेत का पानी उसके खेत ने आके खराब ना कर दे। बगल वाले किसान ने पता नहीं क्या डाला हुआ है। तो हरी खाद के बीज सनई है, ढेंचा है, मूंग है, इसका बीज भी सरकार देती है, प्रशिक्षण देती है और उनके खेत पर एक एकड़ में दिखाती है जितनी पैदावार आपकी पहले होती थी उससे कम नहीं होगी। और दूसरी बात उनको ये भी बताती है कि आपके घर में जो बीमारियां तमाम होती हैं वो नहीं होगी, कम हो जाएंगी, आपका दवाई का खर्चा बचेगा, आपके लोग जो स्वस्थ रहेंगे तो खेतों में ठीक ठाक काम करेंगे,
1: ऊर्जा रही
0: जी
1: और लंबी आयु भी रही
0: जी। और वो जो अनाज पैदा होगा उस खेत में वो बड़ा स्वस्थ होगा क्योंकि उसमें जहर नहीं डले हुए होंगे। दूसरी बात ये होगी कि जो खेत में डालते थे जहर, चाहे वो खाद के रूप में फर्टिलाइजर के रूप में और चाहे वो केमिकल जो कीड़े और बीमारियों से बचाने के लिए है, वो बह के नदी नालों में नहीं जाएंगे, वो जमीन के नीचे नहीं जाएंगे, जैसे कुएं का पानी खराब हो, नदी नाले में गए तो जो तालाब में पलने वाली मछलियां हैं वो वही जहर खाएंगी,
1: या जे वहां स्नान करता हो के स्किन रोग चर्म रोग
0: सब हो जाता
1: है। लेकिन चीज ढकले के बीच में प्रयास भाई
0: जी, तो अभी तो ये प्रयास चल रहा है कि किसान को ये विश्वास दिलाया जाए कि आपकी पैदावार कम नहीं होगी, दूसरी बात आपकी लागत कम होगी, पैदावार कम नहीं होगी, लागत कम होगी क्योंकि आपको कुछ खरीदना नहीं है, सब कुछ आपको अपने घर पे बना लेना है, कहीं बाहर से कुछ नहीं खरीदना है। तो जिसको हम लोग शून्य लागत वाली खेती कहते हैं, तो एक तरह से जैविक खेती शून्य लागत की खेती हो गई।
1: सब कैसे बन सकेला जैविक खाद, कुछ अगर ये पर बताइए।
0: देखिए
1: जैसे मान लीजिए अगर एक एकड़ से केहू के रकबा कम बा
0: जी,
1: तो का वो योजना में सम्मिलित किसान नहीं हो पाई?
0: हाँ, पहले चरण में था कि एक एकड़ होना ही चाहिए, लेकिन अब हो गया कि अगर आधा एकड़ भी खेत है तो दूसरा किसान जो आधा एकड़ वाला उन दोनों को जोड़ के एक
1: सम्मिलित रूप से
0: सम्मिलित रूप से बना सकते हैं। तो अब कोई सीमा की जो खेत का क्षेत्रफल है उसकी सीमा नहीं रही और लोग आराम से इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उनको पूरा लाभ मिलता है। यही नहीं, किसान के खाते में भी पैसा जाता है और अतिरिक्त पैसा
1: सहयोग राशि,
0: जी हाँ, तो वो DBT के माध्यम से वो ट्रांसफर होता है कि वो इसको करे। पहला मुद्दा जो हमने शुरू में जैसे कहा कि भी एक विश्वास जगाया जाता है उसके दिल में कि अगर आप जैविक खेती करेंगे तो आपकी पैदावार कम नहीं होगी, दूसरा जो आपकी पैदावार है वो बिकेगा कम से कम 20% ज्यादा मूल्य पर। अब देखिए तमाम प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस जैसे भी आ गए हैं जो दुगने दाम पर बेच रहे हैं अपना उत्पाद क्योंकि वो जैविक है और लोग खरीदने को तैयार हैं।
1: और कभी कभी गाड़ी से, छोट छोट गाड़ी से सब्जी भी लिखल रहेला कि जैविक खाद से तैयार साग सब्जी,
0: सही,
1: तो ओहू के लोग ललायत होत हमें, मतलब अभी जागरूकता तो नहीं उतना ना है कि जन जन में ये बात पहुंच जाए। जैसे कि सबसे बड़ी चीज डॉक्टर साहब कि कतनो पैसा रहे लेकिन अगर शरीर स्वस्थ ना आई बात तो ओकरे सामने कुल बेकार बात,
0: सही बात
1: कहा जाला, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहेला, आप कुछ सोच सके नहीं, कुछ समझ सके नहीं। तो इसमें और कैसे प्रचार प्रसार कर जाए ताकि आम जनमानस में, किसान में, गाँव में, देहात कस्बा में ये चीज प्रचार प्रसार भरपूर हो?
0: देखिए
1: अपने विचार से
0: हाँ, जो प्रदर्शन वाली बात है ये तो उसको एक किसान ने लगाया प्रदर्शन या एक किसान के खेत पर लगा तो उसके आसपास के गांव वाले भी देखने आते हैं, गांव वाले कि ये देखिए इनकी खेती बहुत बढ़िया है और इनकी आमदनी घटी नहीं बढ़ गई, इनकी आमदनी बढ़ गई। एक तो प्रचार का वो पुराना तरीका
1: है
0: तो उसका तरीका चल रहा है, दूसरा मीडिया है, अब आज की वार्ता में जो लोग सुन रहे हैं उनके दिल दिमाग में हो, इसका नुकसान भी दिखाया जाए कि अगर आप जैविक खेती

0: नहीं करोगे तो ये नुकसान है कि फिर आप एक जमाना अभी सरकार लाने के प्रयास में है कि आपका हवा ठीक हो जाए, पानी ठीक हो जाए। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, किसान का खेत जो है वो और ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा। कारण एक चुटकी मिट्टी में लाखों जीवाणु होते हैं, एक दो नहीं लाखों जीवाणु होते हैं, हमको आंखों से नजर नहीं आएंगे, उसको आप माइक्रोस्कोप में करके देखिए तो होगा। लेकिन हम तो किसानों को ये कहते हैं, क्योंकि हम लोग भी यह कार्यक्रम कर रहे हैं 11 जिलों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जैविक खेती हम लोग करवा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग के सहयोग से ये कर रहे हैं, नाबार्ड एक बैंक है उसके सहयोग से भी हम लोग जैविक खेती करवा रहे हैं। तो हम उनको बताते हैं किसानों को कि आप केंचुआ देखा है, केंचुआ वो सबसे बड़ा जीवाणु है जो आंख से दिखाई देता है। किसान कहता है पेड़ के नीचे या मेड़ वेड़ में केंचुआ नजर आता है। यही सवाल हम पंजाब के किसान से कहते हैं, पंजाब का किसान केंचुआ नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुगुना तिगुना दर से ये जहर डाल के
1: रासायनिक खाद
0: वो मार रखा है। उन्होंने वहाँ कुछ है ही नहीं है, वो मिट्टी निर्जीव हो गई है। मिट्टी जीवित है लेकिन वहाँ की मिट्टी जो निर्जीव हो गई, अपने वहाँ की भी निर्जीव होने की ओर बढ़ रही है।
1: हाँ जब सर।
0: तो इसीलिए ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो जैविक खेती कही है, आसान भाषा में जो जैविक खेती का जो कार्यक्रम, इसीलिए सरकार ला रही है कि आपका मिट्टी सुधरे, आपका पानी सुधरे, आपका हवा सुधरे, आपकी आमदनी बढ़े,
1: स्वस्थ भी रहे
0: और स्वस्थ रहे, ताकि आपका जो डॉक्टर के वहाँ जाके लाइन लगाते हैं वो लाइन लगाना
1: घर घर में मरीज डॉक्टर साहब दिखाई दे तुम्हें।
0: जी,
1: जैविक खेती और उसे होए वाला लाभ, ये विषय पर जानकारी देते हलन वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरसी चौधरी जी।
2: कार्यक्रम खेती किसानी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, समाचार होंगे बस कुछ ही पलों में।
3: Travel to Iran. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Assam on high alert after heavy rain accompanied with flash floods hit parts of Arunachal Pradesh. Hockey India announces 24-member junior women's squad for upcoming United Kingdom tour beginning next month. And in FIFA World Cup, Colombia qualifies for round of 32 after beating DR Congo 1-0 in Mexico today. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harris criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
4: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would only like to stress for brevity of time that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. It has always been, is and will remain so.
3: The Indian envoy also spoke about the ongoing review of the UN mandates under the UN 80 framework, which aims to improve efficiency across the organization. The Indian embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. In light of recent positive developments and the improvement in the overall situation, the embassy advised Indian nationals to contemplate about traveling to Iran. According to the advisory, Indian nationals advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens currently residing in Iran, as well as those required to travel to Iran for unavoidable reasons, are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant, and maintain constant situational awareness. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran and those arriving in the country to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +989128109115, +989128109109, +989128109102, and +989932179359. Internationals can also contact the embassy through email at cons.tehran@mea.gov.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935।

0: इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स

0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की

0: छाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। दो दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त है नेपाली कार्यक्रम का, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।
2: सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई स्वागत तथा अभिवादन जनाउँदै अब हजुरहरूलाई सुनाउने छौ लोकनी आधुनिक गीत।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 4:20 हुए हैं। मीडियम वेव पर संपन्न होती है हमारी आज की पहली सभा। एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम जारी रहेंगे। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: आज के मैं

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता
2: अभी भी आता है। उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे, और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया, और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे, और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ
2: जी। हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
2: जी? जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, और उस वक्त कोई स्टूडेंट वनमैन शो करे

0: असंभव नहीं होता था, मतलब उसके
1: जी
0: लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है
0: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका
0: जी
1: हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
0: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण से मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले,
1: जी,
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है, बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है,

0: लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती
1: मैं
0: है?
1: तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूँ उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियाँ होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियाँ दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में,
0: जी
1: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या
0: जी
1: उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो
0: जी
1: ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
0: जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
1: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
0: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
1: इस गाने से जुड़ी भी नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
0: जी,
1: है।
0: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे
1: किशोर कुमार
0: पिताजी।
1: मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
0: क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं।
1: जी।
2: वो शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी ही सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
0: गजब।
1: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ।

0: था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी। हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमंच शो था बंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही

0: खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ। और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र, वो जो उनको मैंने भेंट करे थे, वापस लौटा दिए हैं। और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे,
1: जी।
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है।
1: जी
0: उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं, मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे, और बड़े खूबसूरत काम थे। ये वो उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो आपने
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग,
1: जी
0: और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई तो वो हो नहीं
1: वो
0: पाया।
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया, और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे

0: स्कंद गुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
1: जी।
0: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे और फिर बहुत ही, जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था। मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूं। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
0: हाँ।
1: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
0: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में। और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी जी।
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 हु डिक्लाइन ट्रिनाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।

0: मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ
0: बहुत ही आश्चर्य था,
1: होगा।
0: क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, बट स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी
1: जी
0: भीड़
1: जी
0: थी, इतना सारा क्राउड था। बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना,
1: बिल्कुल
0: उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी
1: जी
0: क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: जी यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस
0: इस
1: बात का
0: बात का
1: वादा
0: वादा
1: कर
0: कर
1: लो,
0: लो
1: सुनते हैं ये
0: जी।
1: गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
0: जी,
1: वो।
0: जी, बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े

0: संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक होकर के, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी।
1: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो

0: एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी, यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,
1: जी, सुनते हैं
0: ये
1: ये
0: वाला
1: गाना।
0: सुनता।

0: गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और

0: और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है, और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताएं।
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज होती है, कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। प्रारंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के प्रारंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: I also refer to the unwarranted...
3: मैं पाकिस्तान

0: यानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टिपत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमसुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SMKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। खेदेम शिलेमा चानू कप्तान तथा निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर

0: सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज। तो चलिए हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है, इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इस विचार के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस गीत के पास होता हो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की, जो हमारे जीवन में बढ़ती तकनीक के साथ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। जी हाँ श्रोताओं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, फ्रिज, ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जब इनका इस्तेमाल बंद हो जाता है तो ये सभी डिवाइस बन जाते हैं ई वेस्ट। भारत में हर साल करीब 50 लाख टन से भी ज़्यादा ई वेस्ट निकलता है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि अगर इस कचरे का सही प्रबंधन ना किया जाए तो ये हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ई वेस्ट में तांबा, सोना, सीसा और कई हानिकारक रसायन होते हैं। ई वेस्ट को कचरे में फेंक देना सही तरीका नहीं है। तो ये जानते हैं ई वेस्ट से होने वाले नुकसानों के बारे में। श्रोताओं, ई वेस्ट अगर खुले में जला दिया जाए या गलत तरीके से फेंक दिया जाए तो जहरीले रसायन जमीन और पानी में घुल जाते हैं। इससे कई बीमारियां और प्रदूषण बढ़ जाता है, तो जरूरी है कि हम इसका सही प्रबंधन करें। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम बनाए, जिसके तहत कंपनियों और नागरिकों को जिम्मेदार बनाया गया पुराने उपकरण इकट्ठा करना और रिसाइकलिंग करवाना। इस दिशा में कई स्टार्टअप और कंपनियां आगे आ रही हैं, जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर खोल रहे हैं, जहां से वे कीमती धातुओं जैसे तांबा और सोना भी निकालते हैं। श्रोताओं, लेकिन आज भी ज़्यादातर ई वेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गलत तरीके से निपटाया जा रहा है। सरकार लगातार तकनीक से जुड़े नए संसाधन और नए समाधान और जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि आम जनता ई वेस्ट के बारे में जागरूक हो सके। श्रोताओं, आइए जानते हैं कुछ आसान से सुझाव। इलेक्ट्रॉनिक सामान को कबाड़ में फेंकने की बजाय प्रमाणित रिसाइकलर को ही दें। जरूरत ना हो तो नई डिवाइस ना खरीदे, पहले रिपेयर फिर यूज करें। अपने बच्चों और परिवार के साथ ई वेस्ट प्रबंधन पर चर्चा करें। पुराना मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने शहर की अधिकृत रिसाइकलिंग यूनिट को ही दें। याद रखें, छोटी छोटी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है। ई वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करके न सिर्फ हम अपने घर व शहर को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण बचाते हैं। तो श्रोताओं, चलिए आज वादा करें, ई वेस्ट को सही जगह पर देंगे और उसे रिसाइकल करवाएंगे और जागरूक बनेंगे। इस चर्चा के बाद दोस्तों, अब बारी है एक प्यारे से गीत की।

कार्यक्रम हम आगे चलते हैं और अब हम बातें करेंगे क्या युवाओं को बचत की आदत डालनी चाहिए और कैसे छोटे छोटे कदमों से आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, बचत मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि ये एक अच्छी आदत भी है जो हमें बड़ी परेशानियों में भी संभाले रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर महीने अपनी पॉकेट मनी से कुछ हिस्सा बचा लें तो उसके फायदे कितने हो सकते हैं? बिल्कुल श्रोताओं, बचत की आदत युवा उम्र में ही डाल लें तो आगे चलकर पढ़ाई, करियर या कोई मजबूरी आने पर हमें दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। छोटी छोटी बचतें भी आगे चलकर बड़ी रकम बन जाती है। माना कि आजकल डिजिटल पेमेंट का जमाना है, लेकिन छोटी बचत का महत्व कभी कम नहीं होता।

उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर हर महीने आप 100 रुपया बचाते हैं, एक साल में आपके पास 1200 रुपया होंगे जिससे आप कोई किताब, गैजेट या छोटी ट्रिप भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप सेविंग को बैंक या पोस्ट ऑफिस की बचत योजना में डालते हैं तो उसमें आपको ब्याज भी मिलेगा, यानी पैसा पैसा बनाता है। दोस्तों हर महीने खर्च और आय का बजट बनाएं और उसका नियमानुसार पालन भी करें, तकनीक का उपयोग करें, ऑनलाइन बैंकिंग, बजटिंग एप्स, ऑटो सेविंग ट्रांसफर सेट करें। गैर जरूरी खर्चे जैसे बार बार बाहर खाना, फिजूल की शॉपिंग, गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन सीमित करें। इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी राशि अलग रखें। छोटी राशि से ही सही रेगुलर बचत की आदत डालें, भले ही शुरुआत 100, 500 या 1000 से करें। खर्चों को ट्रैक करें, हर महीने देखें कि पैसे कहाँ जा रहे हैं ताकि फिजूल खर्ची आसानी से पकड़ सकें। और श्रोताओं साफ साफ वित्तीय लक्ष्य बनाएं और उसी हिसाब से बचत और निवेश प्लान करें और इन सभी बचत करने की आदतों से आप अपने को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं और किसी भी मुसीबत आने पर उसका सामना कर सकते हैं। कार्यक्रम में हमारी बातें जारी रहेंगी, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं प्यारा सा गीत।

इस गीत के बाद हम बातें करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में करियर के बेहतरीन विकल्पों के बारे में। तो अगर आप केमिस्ट्री के छात्र हैं या इस विषय में भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये चर्चा आपके लिए खास है। सबसे पहले जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। सबसे अधिक अवसर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, जहाँ क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल सेक्टर और फूड इंडस्ट्री में भी रसायन विज्ञान के विशेषज्ञों की काफ़ी मांग होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में भी अनेक अवसर हैं, जैसे कि IOCL, HPCL, BARC और अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लैब टेक्नीशियन, एनालिस्ट और अन्य पदों पर वैकेंसियाँ आती रहती हैं। ये नौकरियाँ स्थिरता और अच्छे वेतन के लिए पसंदीदा ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जहां काफ़ी संभावनाएं हैं। आप ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जैसे उभरते क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। इसके लिए मास्टर्स या PhD डिग्री आपके लिए लाभकारी होगी। दोस्तों, इसके अलावा रसायन विज्ञान की पढ़ाई के बाद आप शिक्षण क्षेत्र में भी जा सकते हैं। विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्यापन के अवसर रहते हैं। इसके लिए आप नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान में करियर के बहुत सारे विकल्प हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, रिसर्च हो, शिक्षा हो या सरकारी नौकरियाँ। बस आपको अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा चुननी है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप इस क्षेत्र में अपनी योग्यताओं को निखारें और उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: चंदन का एहसास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पंचो जय हिंद। हाँ पंच भाई, यही नारा साथे अपन बैठकी शुरू भइल अपने कार्यक्रम में। पंच भाई आप सबके स्वागत बा। पंच भाई देखी, हर दिन कौनो न कौनो दिवस मनावल जाला, काहे से वो दिवस का एक अपन अलग महत्व होला। और यही में जौन बा कि आज एगो दिवस हवे जौन की महिला लोगन खातिर विशेष रूप से दिवस के योगदान हवे, जौना के कहल जाए कि कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इ दिवस मनौला के ई उद्देश्य पर भैया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीत शक्ति स्थापना और मध्यस्थता में महिलाओं के सार्थक भैया भागीदारी के सुनिश्चित करे। एकरे साथे ही लैंगिक समानता के बढ़ावा दिहल भी है। ये दिवस के घोषणा भैया उ कहल जाला कि मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 जून 2022 में अपने 76वें सत्र के दौरान प्रस्तावित कैल गेल। और तब से ही हर साल 24 जून के ये दिवस के मनावल जाला।
6: बिल्कुल सही भैया।
5: और भैया ये दिवस के तहत अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कैल जाला, ताकि हर साल मतलब एकर कौनो थीम होला।
6: बिल्कुल
5: जौन की भैया अब की जौन एकर थीम बा कि नेतृत्व समानता उन्नत और शक्ति की खोज।
6: बिल्कुल
5: एकरे अनुरूप भैया कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कैले, कई के समानता के आगे बढ़ावल और वैश्विक संवाद के भैया एक अलग आकार दिहल, ताकि महिला लोगन के में भागीदारी सुनिश्चित रहे। तो भैया अपने बैठकी के आगे बढ़ावल जा और आई सुनल जाए एगो भेंटवार्ता, हड्डी की बीमारियाँ, ए पर जानकारी देते हैं डॉक्टर अमित मिश्रा और इनसे बतियावत हैं भैया कृष्णचंद। तो अपन पंच भाई जानकारी ले।
7: पंच भाई आज अपने कार्यक्रम में आये हैं डॉक्टर अमित मिश्र जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हड्डी रोग विभाग बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत बा।
8: धन्यवाद।
7: अगर शरीर के बात कर लिया तो सही, हड्डी के ऊपर शरीर का पूरा ढांचा टिकल बा
8: जी,
7: हड्डी से संबंधित भी जब तमाम तरह का परेशानी हो जाली। आज हम आपसे ये जानना चाहब कि हड्डी से संबंधित कौन कौन बीमारी हमन के हो सकेली।
8: हड्डी से संबंधित गठिया जिसको आर्थराइटिस भी बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियो प्रोसेस, रिमोटाइड आर्थराइटिस, बच्चों में रिकेट्स, ठीक है, ये बीमारियां जो है काफी प्रचलन में है। ज्यादातर मरीज जो है वो इन बीमारियों के साथ हम लोगों के पास आते हैं।
7: आप सबसे पहले चर्चा करिए अर्थराइटिस, एकर का मतलब भैले और ये का है?
8: अर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सूजन या जोड़ों में दर्द होना, ठीक है। अर्थराइटिस सामान्यतः जो है 50 से 60 साल की उम्र के से ज्यादा के लोगों में घुटने में, कूल्हे में, कंधे में, कोहनी में, इन सब जोड़ों में दर्द रहता है। हम लोगों का जो तरीका है शौच का या रोजमर्रा के जो काम है जिसमें हम नीचे बैठते हैं, पालथी मारते हैं, शौच के लिए जब जाएंगे तो उसमें घुटने का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिससे घुटने का दर्द सबसे पहले मरीज लेके पहुंचता है। 50 से 60 साल की उम्र के बाद उम्र के हिसाब से घुटने के जोड़ घिसते हैं, घिसने से उसमें टेढ़ापन भी आता है और दर्द भी आता है
7: जी। आपके कहने का मतलब ये कि अगर आदमी पहले से थोड़ा सचेत रहा तो इसे बचल जा सकेगा
8: जी। अपने रोज के कामों में परिवर्तन लाके, जैसे जमीन पे नीचे नहीं बैठना है, बहुत पालथी नहीं मारना है, शौच के लिए भी जिनकी उम्र 50 से 60 साल है या ऊपर है, तो जो लैट्रिन कुर्सी वाले होते हैं जिसमें जोड़ों का दर्द हो रहा है उन लोगों के लिए खासकर है, ये सब करके वो जोड़ों की उम्र को बढ़ा सकते हैं, जिससे वो जोड़

0: लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे।
1: जी जी, आप ऑस्टियोपोरोसिस का चर्चा कर ली है, एमहन का दिक्कत हो रहा है।
0: ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों का कमजोर होना, ये भी जो है बीमारी ये उम्र के साथ बढ़ने के साथ जो है ज्यादा होती है।
1: अच्छा, एक पीछे का कारण काहे का हड्डी कमजोर हो जाला?
0: हड्डी कमजोर होती है कुछ उम्र के हिसाब से, जो शरीर की आवश्यकता होती है वो खान पान में पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसकी अस्थि मज्जा जो है वो पूरी तरह से बनती नहीं है वहां पे, और कैल्शियम की कमी से उसका जो मिनरलाइजेशन होता है वो भी नहीं हो पाता है।
1: अच्छा,
0: जिससे ये खोखली होने लगती है हड्डियां।
1: जी, अच्छा, एक स्वस्थ आदमी का जन्म एक दिन में कितना कैल्शियम की जरूरत पड़ेगा?
0: उसको 1000 मिलीग्राम से लेके 1500 मिलीग्राम तक, इसके लिए उसको दिन भर में कम से कम आधा लीटर दूध जो है पीना होता है।
1: एकरे अलावा जनबा खैला पियला में कौन चीज को समावेश करे ताकि जनबा कैल्शियम की कमी ना होके?
0: खाने में दूध से बनी हुई चीजें जैसे पनीर है, खोया है, छेना है, इसके साथ फल है, फल में सेब है, अमरूद है, केला है, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा रहती है, और जो हरी सब्जियां हैं उसमें भी कैल्शियम की मात्रा रहती है, तो इनके सेवन से आप इससे बच सकते हैं।
1: एगो और आप बीमारी की चर्चा कर ली है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ई का है एकर का लक्षण देखना पड़ेगा?
0: रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक ऑटो इम्यून है बीमारी, जिसके कारण की बहुत जानकारी नहीं है, ये किसको होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, और इसकी रोकथाम भी मुश्किल है
1: जी।
0: इसको हम पहले से जान नहीं सकते हैं कि किस मरीज को ये होगा
1: जी।
0: इसमें क्या होता है कि जो हाथों के पैरों के जो छोटे जोड़ होते हैं उसमें सूजन आती है, सुबह उठने पर उसमें अकड़न रहती है, जो कुछ देर बाद धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर ये मर्ज लंबे समय तक रहेगा तो हाथों पैरों में टेढ़ापन भी हो जाता है इससे,
1: तो मरीज का सावधानी बरतें।
0: इसके लिए तो आपको तत्काल अगर ऐसा है फीचर आपके साथ तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके कुछ टेस्ट हैं, इसको रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं, एनटीसीसीपी जांच होती है, ये सब जांच करा के और इनकी जो भी दवाइयां हैं वो विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलके खाना चाहिए।
1: आप शुरू शुरू में चर्चा के लिए हैं कि जैसे उठला बैठला के पोजीशन व स्थिति बात यमहन जो में कोनो असर पड़ी है कर?
0: इसमें भी छोटे जोड़ों के साथ जो है बड़े जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो बड़े जोड़ों के लिए फिर वही घुटने में अगर आप नीचे बैठ रहे हैं, पालथी मार रहे हैं, तो वो जोड़ तेजी से जो है खराब होंगे
1: जी।
0: उसमें जो उम्र के वाली आर्थराइटिस है वो थोड़ा पहले आएगी अगर आपको साथ में रूमेटॉइड भी है तो।
1: और डॉक्टर साहब, स्पॉन्डिलाइटिस का है यमहन का दिक्कत होला?
0: स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो रीढ़ की हड्डी, चाहे वो गर्दन की हो, कमर की हो, पीठ की हो, उसमें कोई भी सूजन या इन्फ्लेमेशन आ रहा है, कई बार हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है। गैप कम होने का अर्थ यह है कि रीढ़ के बीच में, हड्डियों के बीच में कुछ गद्दे होते हैं जिनको डिस्क बोलते हैं, डिस्क जो है वो खिसक जाते हैं और वो कहीं आसपास की नस पे दबाव डालते हैं, जिससे वो दर्द आपका गर्दन का जो दर्द है वो गर्दन में, कंधे में, हाथों में भी पहुंच सकता है, वो दर्द खिंचाव की तरह वो दर्द होगा, सुन्नपन हो सकता है। अगर ये चीज कमर में हो रही है तो कमर में पैरों के पीछे पीछे पंजे तक जो है दर्द चाव जाएगा और उसमें भी सुन्नपन आ सकता है।
1: कई लोगों का हम देख लें कि डॉक्टर साहब जब सोवन है तो उनके जनबा एक तकिया से नहीं मन भराला, दो दो तीन तीन तकिया लगावना, और बिस्तर भी बहुत जनबा आरामदायक लगावना, एकर का असर पर पड़ी?
0: इसका यह असर पड़ता है कि देखिए आपका पोस्चर जो होना चाहिए, जब आप लेट रहे हैं तो आपके कंधे का पीछे वाला भाग और सर का पीछे वाला भाग ये एक समतल लेवल पर होना चाहिए, इसके लिए पतला तकिया जो है वो मस्ट है। और गद्देदार चीज से भी अगर आप सोएंगे तो जो आपकी रीढ़ है उसका लचीलापन बढ़ेगा, तो जिससे उसमें पोस्चुरल डिफॉर्मिटी हो सकती है, जो बीच का गद्दा है वो खिसक सकता है, इसलिए कड़ा तो नहीं लेकिन एक जिसको फर्म कहते हैं, जो बहुत मुलायम भी ना हो, बहुत टाइट भी ना हो, उस तरह के सतह पे सोएं।
1: आप रिकेट्स का चर्चा कर ली है, रिकेट्स का दिक्कत जो के हो सकेला?
0: रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो है उनके जोड़ जो उनका विकास वाला भाग है, पैरों के हाथों के जो हिस्से होते हैं जैसे घुटने के पास, टखने के पास, कलाई के पास, इसमें जो है विटामिन डी कम होने से कैल्शियम का मिनरलाइजेशन नहीं होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिससे हड्डियों का विकास रुक जाता है। इसमें हाथों पैरों में सूजन आना और हाथ पैर का टेढ़ा होना ये मेन इसके सिम्टम्स हैं। इलाज के तौर पे आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करा सकते हैं, मतलब विटामिन डी खा सकते हैं और विशेषज्ञ से राय ले सकते हैं।
1: कई बार आप लोग सलाह दिया जाला कि लड़का लोग जो पैदा होते हैं तो शुरू शुरू में उनको धूप दिखावल जाए, धूप से भी जो विटामिन डी,
0: धूप से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, त्वचा में जो है धूप पहुंचने पे विटामिन डी बनता है, इसी वजह से हम लोग जैसे कहा जाता है ब्लैक स्किन, मतलब काले चमड़ी के लोग हैं हम लोग, एज कम्पेयर टू जो विदेशों में हैं गोरे लोग, तो हमारे में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो विटामिन डी की कमी हमारे में कम होती है उनसे।
1: अच्छा, लड़कन में

0: जोन आप बतौली हैं सूखा रोग, एक का लक्षण देखा पड़े, जैसे आम आदमी कैसे जाने कि सूखा रोग हो गया।
1: सूखा रोग होने के लिए मेनली उसमें जोड़ों के पास थोड़ी सूजन रहेगी, बच्चे को दर्द भी महसूस हो सकता है, वो कहेगा बार बार कि उसके पैरों हाथों में दर्द हो रहा है, और ज्यादातर पैर जो है वो टेढ़े होने लगते हैं। टेढ़े होने लगने पे ही सबसे पहले ये मालूम चलता है।
0: कई बार शिकायत मिला कि भाई फलाना आदमी तो सोल रहा, सोल ही में ओकर हड्डी टूट गई। कई बार यो लोग कहना कि जरा सा केहू के चोट लगल तो हड्डी टूट गई। ये कैसे जानल जाए कि हड्डी जोन बा कितना कमजोर बा या कितना मजबूत बा?
1: इसके लिए जो है एक जांच होती है जिसको बीएमडी टेस्ट कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी
0: जी।
1: इसको डेक्सा स्कैन के थ्रू देखते हैं और उससे हड्डी की क्वालिटी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उसकी क्या स्थिति है, कमजोर है, ताकतवर है, उसी के रेटिंग के हिसाब से फ्रैक्चर का रिस्क, हड्डी टूटने का रिस्क डिसाइड होता है।
0: आम आदमी खाइले पीले में कौन चीज का ध्यान रखे ताकि कैल्शियम की कमी ना हो? जैसे दूध तो बता देनी या दूध से बनल चीज, लेकिन एक अलावा और कौन कौन चीज खाए ताकि ऐसा दिक्कत ना आवे?
1: दूध के बाद जो है सब्जियां, हरी पत्तेदार फल, और फल में जैसे सेब, केला, अमरूद, ये सारी चीजें। इसके अलावा मेनली कैल्शियम का मेन सोर्स जो है वो दूध है, बाकी कैल्शियम थोड़ा थोड़ा तो हर चीज में है, अनाज में भी है कैल्शियम, लेकिन मेन सोर्स जो उसका है वो मिल्क। 40 साल की उम्र के बाद आपका रोजमर्रा का कैल्शियम जो है आपके खाने से पूरा नहीं हो पाता है, तो सलाह ये दी जाती है कि एक कैल्शियम की गोली जो है 40 साल के बाद आप रेगुलर एक खाएं। वो 500 मिलीग्राम रहता है, तो 1000 मिलीग्राम आपके खाने से हो गया और 500 जो है आपने दवा के रूप में ले लिया।
0: अच्छा, हड्डी से संबंधित अगर कोनो भी समस्या के हो रहा बा तो वो का करें?
1: हड्डी संबंधित कोई भी दिक्कत अगर किसी को हो रही है तो सीधे वो विशेषज्ञ के पास जाएं। हड्डी के डॉक्टर जो हैं वो जिला अस्पताल में भी रहते हैं, हर जगह सीएससी पर भी हैं, मेडिकल है जहां, कॉलेज वहां पर तो है ही है, और इवन लोग बाहर अपना भी क्लिनिक या अस्पताल खोल के देखते हैं मरीज।
0: आपके कहने का मतलब ये बात कि अगर कोनो भी समस्या हो रहा बा तो तुरंत जो बा
1: विशेषज्ञ की राय,
0: विशेषज्ञ की राय लें और उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो बा अपन इलाज कराऊं, अपने से कोनो दवाई
1: अपने से कोई दवा नहीं,
0: और कोनो भी दिक्कत भेल तो वहां देर ना करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में अयली और हड्डियों से संबंधित कौन कौन मुख्य बीमारी है और ऐसे कैसे बचल जा सकेला, एक का इलाज बा, एक बारे में इतना निमन जानकारी देनी, एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ?
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
5: पंच भाई, खूब निम्न ही जानकारी रहल है, हड्डी की बीमारियां पर जानकारी देते रहनी है डॉक्टर अमित मिश्र और इनसे बतियावत रहना भैया कृष्णचंद, तो इनके दिया जाए धन्यवाद। और भैया देखिए, अपने बैठक के आगे बढ़ल जाए, आज जौन है कि भारत रत्न से सम्मानित और अपने देश के चौथा राष्ट्रपति के साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी भैया रहने बीबी गिरी, जेकर पूरा नाम भैया बराहगिरी वेंकट गिरी हवे, इनकर आज पुण्यतिथि हवे। 10 अगस्त 1894 ईस्वी में इनकर जन्म भइल रहल और आज ही के दिन यानी कि 24 जून 1980 में इनका देहांत हो गए रहल। ई राष्ट्र निर्माण के और जनसेवा में अपन उत्कृष्ट योगदान दिए न, और भैया इनका राजनीतिक जौन जीवन रहल भैया बड़ा संघर्षमय और लंबा रहल भैया। अपने

देश के भैया 1969 से और 1974 तक राष्ट्रपति रहना है। एकरे पहले 1967 में और 1969 तक उपराष्ट्रपति भी रहना है। और इनकर भूमिका ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलन में भी अग्रणी रहल। और ये राज्यपाल भी भैया अपने देश के केरल राज्य के राज्यपाल भी रहना। कुल मिला जुला के भैया कहले मतलब ये बा कि अपन ये पूरा जीवन राजनीति के समर्पित कर दिया और अपने देश के आगे बढ़ाने भैया। तो अब अपने बैठकी के आगे बढ़ाओ जाओ और आई सुनल जाएगो लोकगीत।

0: भैया खूब निमन निमन मनसाइन भाई, राहुल पांडे और साथिन के आवाज़ में। और भैया देखी हर चीज़ के समय होला, हमन के भी समय से बदल हैं, तो एक साथे पंच भाई हमन के दे अनुमत। पंचो जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। देशभर की गतिविधियों के लिए आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी, तत्पश्चात हिंदी में समाचार कुछ ही देर में।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा, भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में अग्रणी वैश्विक कंपनियन आ निवेशकन के साथ बातचीत कई लें। इस दौरान वहां के उत्तर प्रदेश के निवेश अनुकूल नीति, मजबूत कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और विकास के संभावना के बारे में जिक्र कई लें। मुख्यमंत्री कहले कि नवाचार, प्रौद्योगिकी आ सुशासन आधारित विकास मॉडल के साथ है नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकन बड़े भरोसा आ विकास के पसंदीदा जगह ही बन के उभरल हवे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग लगी के घटना के देखत प्रदेश सरकार राज्य के कोचिंग संस्थानन के नियमन के मजबूत कैले आ अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ अभियान के शुरुआत कैले हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि पूरा राज्य में आग से बचाव के उपायन के जांच मिशन मोड में कल जाए। श्री

0: प्रदेश के सज्जो जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करौले के निर्देश दिले हवे। एक रिपोर्ट।
1: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास सुरक्षा के स्थिति में सुधार के देखत भारतीय नागरिकन बदे संशोधित सलाह जारी कैले ह। एगो रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: UPTET 2026 के परीक्षा अगला महीना 2 से 4 जुलाई के बीच हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार बतौलें कि परीक्षा प्रदेश के 60 जिलन के 955 केंद्रन पर आयोजित कर जाए। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड कर जा सकेला। केंद्र सरकार कहले हवे कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बा आयकर लगातारे निगरानी कल जा रहल ह। निगरानी में तेल कंपनियन, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियन आ औरियो पक्ष शामिल ह। सरकार साफ कहले ह कि सोशल मीडिया पर चल रहल खबर भ्रामक आ निराधार बा। E20 पेट्रोल के शुरुआत के बादे से इथेनॉल मिलौले के नाते इंजन में खराबी चाहे गाड़ियन में तकनीकी खराबी के कौनो शिकायत सामने नहीं आयल बा। आज पासपोर्ट सेवा दिवस हवे। ई दिन 24 जून 1967 के पासपोर्ट अधिनियम लागू भइले के उपलक्ष्य में मनावल जाला। ए मौका पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहले हवे कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरका फेरा के क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नया पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रन आ पास्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रन के स्थापना आ रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी कैले से जतरा सुगम हो रहल ह। हज 2027 बदे ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया शुरू हो गई ह। हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट आ हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई ले पंजीकरण करावल जा सकेला। जुलाई के आखिरी हफ्ता में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के जरिया से चयनित यात्रियन के सूची जारी कैल जाए। मौसम विभाग आवे वाला 3 दिन ले प्रदेश के पूर्वी इलाकन में भीषण गर्मी के दौर जारी रहले के अनुमान जतौले ह। हालांकि आज दोपहरिया बाद गोरखपुर में भइल बरखा से लोगन के भीषण गर्मी से राहत मिलल ह। विभाग के मुताबिक 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरखा के एगो नया दौर शुरू होखी। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में अग्रणी वैश्विक कंपनियों एवं निवेशकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के निवेश अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और विकास की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और सुशासन आधारित विकास मॉडल के साथ नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास

0: का पसंदीदा स्थान बनकर उभर रहा है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। श्री योगी ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। हालांकि आज दोपहर बाद गोरखपुर में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। विभाग के अनुसार 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: पंचो जय जवान जय किसान। हाँ पंच भाई, यही नारक साथे अपन बैठकी शुरू भेल अपने कार्यक्रम में, आज सबके स्वागत बा। पंच भाई देखी, अपने यहाँ गवई में सब किसान भाई लोग खेती बाड़ी के काम करेला और ओमे अपन भरपूर लाभ उठावेला। काहे से भैया, गवई में अपन किसान भाई लोगन के कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। तो भैया, अपने यहाँ जौन बा तीन फसल के बुआई हर साल होला, रबी, खरीफ और जायद। तो भैया, ये समय अपने यहाँ गवई में खरीफ के फसलन के बुआई अपन किसान भाई लोग करत हमें। और भैया, अगर ओकर बुआई करत हों तो कुछ बाती के सावधानी में रख के भैया ओकर अगर बुआई करें तो बढ़िया लाभ देखे के मिली। सबसे पहला बात भैया ये बा कि जौन खरीफ के फसल होला ओमें भैया पानी के आवश्यकता ज़्यादा होला, तो एक खातिर जरूरी बा कि या तो मानसून अइले के इंतजार करी नहीं तो अपन सिंचाई के भरपूर व्यवस्था बनाई और ओकरे बाद भैया ओकर बुआई करी। अब एक बात भैया, बुआई जौन करत हैं वो प्रमाणित बीज के ही करी, काहे से कि बहुत ऐसा जग किसान हम लोग जौन जाने और कहीं से भी भैया बीज ले लेने, खुलल बीज ले लेने, कोनो दुकानी से ले लेने, तो ये सब बात एक ध्यान दें, प्रमाणित बीज लें ओकरे बाद सीलबंद बीज लें भैया, और दुकान जहाँ से लेते हैं या फिर कृषि जौन भैया इकाई है वहाँ से लें। एकरे साथे साथे ई बा कि बीज के भैया बुआई कहले से पहले ओके उपचारित कर ली,
1: उपचारित कर ली,
0: हाँ,
1: अंकुरण का परीक्षण
0: कर ली। और एकरे बाद भैया ई भी देखी कि जब भी बुआई आप करत हैं तो खेत के तैयारी बढ़िया कर ली। खेत के तैयारी कहले से ही होला भैया कि ओकर गहरी जुताई कर दी और कम से कम दो तीन बार करी और मिट्टी पलटे वाला हल से करी, कहें ओमें खर पतवार जौन बा ओके निकाल ली। ये तरह से भैया अगर छोट छोट बाती के ध्यान में रखत हैं तो अपन बढ़िया मतलब
1: उपज
0: होई और ओकर बढ़िया लाभ देखे के मिली। तो भैया अपने बैठकी के और आगे बढ़ावल जा और आई सुनल जा, एगो भैया वार्ता है मूँगफली की खेती, ये पर जानकारी देते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, तो अपन किसान भाई जानकारी ले।
2: किसान साथियों नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र सोहावलिया। आप लोगों को आज मैं मूंगफली की वैज्ञानिक खेती के बारे में बता रहा हूं। मूंगफली खरीफ की मुख्य फसल है और इससे तेल भी प्राप्त किया जाता है। यह वायु और वर्षा दोनों के द्वारा भूमि को कटने से बचाती है। मूँगफली के दाने में जो पोषक तत्व की मात्रा होती है 22 से 28% प्रोटीन पाई जाती है, 10 से 12% कार्बोहाइड्रेट और 48 से 50% तेल या वसा पाया जाता है। मूंगफली की जो उत्पादन प्राप्त करते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसके भूमि का चयन किया जाता है और भूमि इसकी ढाल की तरह हो कि पानी उस पर रुके न, और बलुई दोमट मिट्टी हो तो और भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है, उत्पादन बढ़ के मिलता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसके बीज दर की जो मात्रा होती है वह किसान भाई अपने खेतों में कम मात्रा में बोते हैं, जिससे पौध संख्या कम रहती है और उत्पादन कम प्राप्त होता है। अतः यह आवश्यक है कि मूंगफली की जो बीज की दर है उसको बढ़ा करके बोएं। वह मात्रा इस तरह से निर्धारित होती है, उसकी प्रजाति के अनुसार है मित्रों, और जो बोने की दूरी है उस पर निर्भर करती है। मित्रों मूंगफली की जो प्रजातियां हैं वो जैसे उपरहार चंद्रा के नाम से है, जो जून के अंतिम सप्ताह में बोई जाती है, जिसकी बीज दर 70 से 75 किलोग्राम और बुआई की दूरी 50 सेंटीमीटर होती है, पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। उत्कर्ष की इसी तरह से है यम तेरह अंबर, जिसको कि जुलाई के प्रथम पखवाड़े में बोते हैं, 70 से 75 किलोग्राम बीज दर होती है, 45 सेंटीमीटर बुआई की दूरी और पक्त से पक्त की

0: पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर ही रखते हैं। मित्रों, चित्रा और टीजी 37 से और प्रकाश, इन तीनों प्रजातियों की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर और पंक्षेपक पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की मात्रा जो है इसमें गिरी जो है 95 से 100 किलोग्राम लगती है। मित्रों, गिरी जो है इसके ऊपर की जो कड़ी वाली खोल होती है उसको हटा लिया जाता है, अंदर का जो पोर्शन खाया जाता है दाने के रूप में या हुरहा के रूप में तो उसी को बोया जाता है। बहुत अच्छी तरह से जान लें मित्रों कि जब तक संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे अच्छी पैदावार आप नहीं ले पाएंगे। उर्वरकों के प्रयोग के लिए 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 45 किलोग्राम तत्व के रूप में दिया जाए तो अच्छा उत्पादन मिलता है। मित्रों, मिट्टी जितनी ही पोली होगी उतना ही अधिक फलियां बनेंगी, उसके लिए जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य प्रयोग करें। एक साथ फलियां पकें व अट्रैक्टिव हों, अट्रैक्टिव का मतलब यह है कि बाज़ार में देखने पर बिक जाए, उसके लिए आपको 4 किलोग्राम बोरेक्स डालना आवश्यक होगा। उससे दाने गिरी जो है बोल्ड होंगी और अच्छा बाज़ार में वह बेचने पर अच्छा दाम मिलेगा, देखने में अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव फलियां दिखती हैं। फास्फेट का प्रयोग यदि सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में किया जाए तो और अच्छा उत्पादन मिलता है, क्योंकि एडिशनल उनमें सल्फर तत्व तो प्राप्त होता है। मित्रों, इसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें तो बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। बुआई के समय नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, जिप्सम की आधी मात्रा को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बीज के नीचे डाल दिया जाता है और ठीक 3 सप्ताह के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में नत्रजन की आधी मात्रा और बोरेक्स की और जिप्सम की पूरी मात्रा को मिला करके इसको छिड़काव कर दिया जाता है और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला करके इसको गुड़ाई कर देते हैं। मित्रों, इस तरह से अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन फलियां एक साथ परिपक्व हों, एक साथ पके जिससे खुदाई में आसानी हो और आप पूरे खेत को खाली कर दें। इसके लिए 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एक जैविक खाद आती है उसका प्रयोग करें तो फलियां एक साथ पकती हुई नज़र आती हैं और पूरे खेत की आप एक साथ गुड़ाई करके देते हैं, फलियों को निकाल सकते हैं। बीज उपचार मित्रों बहुत आवश्यक है, इसके लिए रसायन का प्रयोग करते हैं तो 2 ग्राम थिरम और 1 ग्राम कार्बन नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। यदि जैविक प्रयोग करना है तो 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 ग्राम कार्बाक्सिन का मिला करके प्रति किलो बीज की दर से शोधित किया जाता है। बीज शोधन के लिए मित्रों 5 से 6 घंटे के बाद मूंगफली के बीज को विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। यह 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। 50 ग्राम या 100 ग्राम गुड़ को 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर के साथ मिला करके 10 किलो बीज के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको हाथ द्वारा अच्छी तरह से मिला करके 2-3 घंटे सुखा करके सुबह या शाम के समय जब धूप कम हो उस समय इसकी बुवाई करते हैं तो अच्छा अंकुरण प्राप्त होता है और उसमें राइजोबियम के जो कल्चर के मिलाने के बाद जो जीवाणु होते हैं उनका अच्छी तरह से विकास होता है, बढ़ते हैं। मित्रों, इस तरह से पेगिंग के समय सिंचाई आवश्यक है और फली बनते समय सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। 2 सिंचाइयाँ जिसको क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई कहते हैं इसको देने से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, अगर इस तरह से आप मूँगफली की खेती करते हैं तो कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: किसे?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले आपके पार्सल

0: में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: सर, 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: किसान भाई खूब निम्न ये जानकारी रहा है, मूंगफली की खेती ये पर जानकारी देते रहिए डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, तो इनके दिए धन्यवाद। और लगल हाथ आई सुनल जाए एगो लोकगीत।

भैया खूब निम्न निम्न मनसाइन भाई, राहुल पांडे और साथिन की आवाज़ में। और भैया देखिए, भैया ये गाना के और थोड़ा सा सुनी, फिर अपने बैठ के आगे बढ़ावल जाता।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: पंच भाई खूब निमन निमन मन साइन भेल और देखी अपने बैठ के का बढ़ल जा भैया और कहल जा कि हम बात कल जात रहल है कि खरीफ फसल के, तो भैया खरीफ फसल में जौन बाकी मुख्य रूप से धान के फसल होला, तो आई वही पर एगो वार्ता सुनल जा, धान बीज उत्पादन तकनीकी ये पर जानकारी देते हैं त्रिवेणी तिवारी, तो किसान भाई जानकारी ली।
4: प्रिय किसान भाई नमस्कार। जब हम खेती करने जाते हैं तो हमें 5 उपादान की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सर्वप्रथम भूमि, सिंचाई हेतु जल, खाद एवं उर्वरक, बीज एवं प्रबंधन। इस उपादान में बीज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा अच्छी हो, उर्वरक का प्रयोग हम करें, पर्याप्त सिंचाई कर दें, लेकिन अगर बीज अच्छा किस्म का नहीं है तो हमारी फसल खराब हो जाएगा तथा हमारे मेहनत एवं संसाधन के अनुरूप पैदावार या उत्पादकता नहीं प्राप्त होगी। अगर हम धान की खेती करते हैं तो उसी संसाधन एवं उसी परिश्रम से बीज उत्पादन कर सकते हैं एवं अपना बीज का व्यवसाय कर सकते हैं तथा आय अर्जन का एक अतिरिक्त साधन बना सकते हैं। इसमें केवल तकनीकी की आवश्यकता है। आइए आज हम आपको धान बीज उत्पादन कैसे करें उसकी बीज उत्पादन तकनीक के बारे में बताएंगे। सरल शब्दों में कहें तो फसल का कोई भाग जिससे एक नया पौधा या फसल विकसित हो सके बीज कहलाता है। विज्ञान के रूप में इसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि बीज एक निषेचित अंडा है, फर्टिलाइज ओव्यूल है, जिसमें इम्ब्रियो, इंडोस्पर्म तथा सीड कोट पाया जाता है और अंकुरण की क्षमता होती है। बीज में अंकुरण सबसे महत्वपूर्ण है। बीज में अंकुरण की क्षमता और नमी अंकुरण के लिए बीज में 40 से 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। उचित तापमान और ऑक्सीजन का

सप्लाई होना चाहिए। इसके बाद हम आपको बीज की श्रेणी बताएंगे। मोटा मोटी उन्नतशील बीज को तीन चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्रजनक, जिसको ब्रीडर सीड कहा जाता है। पहचान के लिए आपको बता दें कि इस पर सुनहरा गोल्डन कलर का टैग होता है, जो 15x15 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद से कैटेगरी होती है आधारी बीज या फाउंडेशन सीड। इस पर 15x7.5 सेंटीमीटर का टैग होता है। उसकी उत्पादन, संसाधन, पैकिंग, रसायन उपचार एवं लेबलिंग आदि की प्रक्रिया बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में मानकों के अनुरूप होता है। इस पर सफ़ेद रंग का टैग होता है। तीसरा होता है प्रमाणित बीज। कृषकों को फसल उत्पादन हेतु बेचे जाने वाले सर्टिफाइड सीड वाला बीज प्रमाणित होता है, जिसका उत्पादन आधारी बीज से किया जाता है। इस पर नीले कलर का टैग होता है। इसके बाद चौथा श्रेणी आती है ट्रूथफुल लेबल सीड, जिसे सत्यापित बीज भी कहा जाता है। ऊपर के बीजों को अगर नहीं हमको बाजार में उपलब्ध है, या किसी दैवी आपदा से अगर नुकसान हो गया, बाजार में अनुपलब्धता है, तो इसको विश्वास के आधार पर खरीद और बेच सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं इसको। इसमें भौतिक एवं अनुवांशिक रूप से शुद्ध आधार बीज का उपयोग किया जाता है। उन्नत कृषि शस्य विधियों एवं फसल सुरक्षा को अपनाया जाता है। अनुवांशिक या भौतिक संदूषण के स्रोतों से निर्दिष्ट पृथक के दूरी, जिसको आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं, का ध्यान दिया जाता है। अनुपयुक्त और अवांछित पौधे को निष्कासित करते रहना चाहिए। देखिए, जब बीज प्रमाणीकरण की बात करेंगे, बीज उत्पादन की बात करेंगे, तो मोटा मोटी तीन चरणों में इसको करते हैं। जैसे कोई फसल उगाते हैं, तो पहली प्रक्रिया है फसल का उगाना, दूसरा बीज का संसाधन, तीसरा बीज का प्रमाणीकरण। अब हम फसल उगाने की बात करते हैं, तो जैसे हम फसल उगाते हैं धान का, उसी तरह इसमें धान का फसल के लिए तैयारी करेंगे। पहले फसल उगाने के लिए हम भूमि की तैयारी करते हैं, गर्मी की जुताई करने के बाद से, दो तीन जुताई करने के बाद से पलेवा लगाते हैं, उसकी रोपाई करते हैं। भूमि का शोधन भी किया जाता है कि हमारी बीज की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से महत्वपूर्ण कड़ी है प्रजातियों का चयन। हमारी जो कार्य योजना है कि पूरे वर्ष भर हम फसल चक्र जो अपनाते हैं, कौन सी फसल लेनी है किस सीजन में, रबी खरीफ और जायद में, उस अनुसार हम फसल प्रजातियों का चयन करते हैं। जैसे हमको गोभी और आलू अर्ली लेना है, अगेती आलू लेना है, तोरिया लेना है, तो उसके लिए हमको कम अवधि वाली प्रजातियों का चयन करना चाहिए। तो कम अवधि की प्रजातियां 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय से विकसित नरेंद्र 97, नरेंद्र 118, सुख सम्राट आज प्रजातियाँ हैं। मध्यम देर से पकने वाली प्रजातियाँ 120 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। देर से पकने वाली प्रजातियाँ 140 दिन से अधिक लगती है। इसमें NDR 8002, नरेंद्र धान 31-12, MTU 70-29, BPT 52-04, सोहरा 57। सुगंधित की बात करें तो टाइप 3 पूसा बासमती, बासमती 370, बल्लभ बासमती है। उसरीली या ऊसर धान की बात करें, अगर ऊसर जमीन में उगाना है, तो ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 2009। इस प्रकार प्रजातियों का चयन हमारी वर्ष भर में उगाई जाने वाली फसलों के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही हमारा खेत लो लैंड है कि अपर लैंड है, अक्टूबर में हमको खेत खाली चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से हमको कम अवधि की फसल उगानी चाहिए, ताकि हम तोरिया या अगेती फसल सब्जी उब्जी उत्पादन कर सके। उसके बाद से आता है उर्वरकों का प्रयोग। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अगर शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं, तो उसमें 120 केजी नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटास, NP की मात्रा होती है, NPK की। इसी तरह मध्यम के लिए 160 केजी का रहता है। सुगंधित के लिए 120-60 रहता है। अब बात इसके प्रयोग की है, तो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय और एक तिहाई मात्रा नाइट्रोजन की रोपाई के समय डाल देते हैं। बाकी नाइट्रोजन की शेष मात्रा ट्रैप ड्रेसिंग में टिलरिंग और बूटिंग स्टेज, जिसको रेणा स्टेज कहते हैं, उसमें डालते हैं। जल प्रबंधन की बात करें, तो जल प्रबंधन में जब कल्ले फूटते हैं, उस समय पानी बूटिंग स्टेज, जिसको रेणा कहा जाता है, बाली निकलने का समय, इस समय पानी मस्ट है, एकदम जरूर देना चाहिए। फूल खिलने के समय पानी रहना चाहिए खेत में। बीज का शोधन भी कर लेना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण हेतु शस्य विधि, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। रासायनिक विधि की अगर बात करें, तो बिस्पायरी बैग सोडियम 10% AC 0.20 लीटर रोपाई के 15 से 20 दिन पर नमी अगर खेत में है, तो उसके लिए खरपतवार नियंत्रण के छिड़काव करते हैं। कटाई मड़ाई इसको सावधानीपूर्वक करना चाहिए अगर बीज उत्पादन कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें मिक्सचर के चांसेस रहते हैं, कोई दूसरी प्रजाति के बीज इसमें न मिल जाए। अगर कंबाइन से कटा रहे हैं, कंबाइन मतलब कटाई और मड़ाई एक साथ, जब कंबाइन हार्वेस्टर से करा रहे हैं, तो उसमें हमको विशेष ध्यान देना है कि उसको पूरी टंकी साफ कर लें, एक या आध पाई कटवाने के बाद से, तो फिर उसकी सफाई करके और

0: करते हैं। अब तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की भी प्रक्रिया है, जिसमें आपको फसल के बारे में सारी जानकारी, आपके बारे में सारी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे उत्पादक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, नज़दीक का रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन इत्यादि। आवेदन करते समय आपको बीज क्रय का स्रोत भी बताना पड़ेगा, बीजक एवं टैग नंबर बताना पड़ेगा, साथ ही टैग बीज प्रमाणीकरण संस्था में जमा कर लिया जाता है। बीज प्रमाणीकरण पंजीयन हेतु आवेदन करने पर आपको पंजीयन शुल्क भी जमा करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। 600 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से इसका निरीक्षण शुल्क है और 50 रुपया पंजीयन शुल्क है। पंजीयन शुल्क की रसीद प्राप्त कर लेने के बाद से आपका पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गया। अब बीज प्रमाणीकरण संस्था की जिम्मेदारी है कि वो अपने सीड इंस्पेक्टर, जिसको बीज निरीक्षक कहा जाता है, आपके खेत पर जाकर इंस्पेक्शन करे, निरीक्षण करे। ये दो चरणों में पूरा होता है। एक, जब बाली फूल आ जाता है तब एक बार निरीक्षण होता है सीड इंस्पेक्टर द्वारा, बीज निरीक्षक द्वारा, और दूसरा बाली आने के बाद और फसल पकने के पहले। मोटा मोटी वो दो चीज़ देखते हैं, एक पार्थक्य दूरी और दूसरा अवांछित खरपतवारों का निष्कासन, जिसको रोगिंग कहते हैं। पार्थक्य दूरी स्व परागित फसलों में 1 से 2 मीटर होता है, तो अगर आपका MTU 7029 या BPT 5204 लगा है, अगर दूसरे खेत में आपको दूसरी प्रजात लगानी है तो 1 मीटर का कम से कम अंतर रखना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। दूसरी, अवांछित खरपतवारों का निष्कासन, जिसको इंग्लिश में रोगिंग कहा जाता है। रोगिंग से मतलब कि अगर धान का BPT 5204 की प्रजात लगी हुई है, उसमें MTU 7029 का एक भी पौधा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक पौधा भी बच गया आपके खेत में, तो एक पौधे में अगर 200 दाना हुआ तो 200 से अगले साल 240 पौधे तैयार हो गए और उस संस्था की रिप्यूटेशन खराब होता है, आपका गुणवत्ता खराब होता है, कि उसमें लोग किसान कहेंगे कि झरना हो गया, तो उसको काट के और निकाल देना चाहिए। और सुबह शाम जब आप रोगिंग करेंगे तो पकड़ में वो बाली आएगी, पौधे की लंबाई से, बाली के दाने के रंग से, दाने के कलर से, दाने के साइज से उसको पकड़ के उसको काट देते हैं। इस प्रकार जब आप कटाई कंप्लीट करा लेंगे तो संसाधन के बाद आपके फिर सीड इंस्पेक्टर जाएंगे, आपका जो लाट बना रहेगा उस लाट में वो लाट नंबर देखेंगे, सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद से आपका मानक के अनुरूप बीज अगर प्राप्त होता है तो टैग जारी कर देते हैं, उस पर सारी सूचना रहती है। संसाधन के उपरांत बीज निरीक्षक सीड इंस्पेक्टर जाते हैं आपको बीज विधायन संयंत्र पर, वहाँ से सैंपल लेके आते हैं। अगर मानक के अनुरूप आपका सैंपल है, पास हो जाता है, तो बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा टैग जारी कर दिया जाता है। वो टैग लगा के आप उस बीज को आप व्यवसाय के रूप में बेच सकते हैं, चाहे दुकान पर या किसी संस्था को बेच सकते हैं। उस पर सारी सूचना रहती है, कटे पीटे बीज की मात्रा, नमी की मात्रा, बोरा में भरते समय बीज की मात्रा, ये सारी चीज़ें उस पर उपलब्ध रहती है और उसको आप बीज व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। धन्यवाद।
1: किसान भाई खूब निम्न ही जानकारी दी त्रिवेणी तिवारी जी, धान बीज उत्पादन तकनीकी, और निश्चित बा कि किसान भाई लोग पूरा जानकारी लिए ने और विधि से अपन खेती बाड़ी के काम करी हैं। भैया देखिए, हर चीज़ के समय होला, तो एक साथ अपने बैठकी के भी समय हो गए, तो हम मन के किसान भाई से लिया जाए अनुमत। पंचो जय जवान जय किसान।

0: अभी कृषक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के

चल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं गुमशुदा सूचनाएं। अनुराधा गुप्ता, पिता का नाम सच्चू लाल गुप्ता। अनुराधा गुप्ता की उम्र करीब 16 वर्ष है, लंबाई करीब 4 फीट 5 इंच है, रंग सांवला है। ये दिनांक 21 नवंबर 2018 से बेलीपार गोरखपुर से लापता है। अनुराधा गुप्ता के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी बेलीपार जनपद गोरखपुर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। प्रतिमा यादव, पिता का नाम जनार्दन यादव। प्रतिमा यादव की उम्र करीब 14 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट है। ये दिनांक 12 अप्रैल 2019 से ग्राम डडवा ककराखोर बेलीपार गोरखपुर से लापता है। प्रतिमा यादव के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप थानाध्यक्ष बेलीपार जनपद गोरखपुर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। रानी, पिता का नाम स्वर्गीय ब्रह्मदेव यादव। रानी की उम्र करीब 14 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट है। ये दिनांक 17 सितंबर 2019 से बांसगांव गोरखपुर से लापता है। रानी के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप थानाध्यक्ष गगहा जिला गोरखपुर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों की सूचना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं लोकगीत। आज के कलाकार हैं राम ज्ञान यादव व साथी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज के कलाकार थे रामज्ञान यादव व साथी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम देश समार। देश समार में आज आप सुनेंगे भोजपुरी वार्ता सेहत का राज मोटे अनाज। वार्ताकार हैं डॉक्टर आद्य प्रसाद द्विवेदी।
2: साल 2023 के संसार भर में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनावल जा रहा बा। सन 2021 में भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में ई प्रस्ताव पेश कैले कि मोटा अनाज के विश्व स्तर पर फैलवले के प्रयास कैल जा। 5 मार्च 2021 के संयुक्त राष्ट्र महासभा सन 2023 के मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनावली के घोषणा कैलस। भारतवर्ष के

ये प्रस्ताव के दुनिया के 72 देश अपन समर्थन दिखल है। भारतीय उपमहाद्वीप में मोटा अनाज के चलन और एकर प्रयोग बहुत प्राचीन काल से चलिया रहल बा। काहे कि मोटा अनाज खातिर हमारे देश के जलवायु और मिट्टी बहुत मुफीद हवे। एकर पोषकता और गुणवत्ता से हमारे पुरखा लोग खूब परिचित रहल है। आयुर्वेद के लगभग सब ग्रंथन में मोटा अनाज के जेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अन्न के संज्ञा देले हवे, एक शुक धान्य खंड के अंतर्गत विस्तार से चर्चा कैल गेल है। अनेक तरह के शोध से भी मोटा अनाज के गुण प्रमाणित भइल हवे। मोटा अनाज एक तो सेहत बदे बहुत उपयोगी हवे, दूसर ये कम लागत में भी अच्छा उत्पादन दे देला। अपने देश में मोटा अनाज में बाजरा, रागी, कुटकी, सावा, ज्वार, कंगनी, मड़ुआ और कोदो के शामिल कइल बा। लेकिन एकरे अलावा भी कुछ और भी अनाज हवे जेके में शामिल कइल जा सकाला, जैसे जौ, मक्का, रामदाना और फल में महुआ। लोक व्यवहार में इन अनाजन के बहुत महत्व है। श्रीअन्न भारत और दुनिया के लोगन द्वारा खेती और उपभोग कल सबसे शुरुआती काल के अनाजों में मानल जाला। सन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जेके अंग्रेजी में मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित भइल बा, एकर महत्व मानल गइल। एकर असर भी जगह जगह देखे के मिल रहल बा। 18 मार्च 2023 के नई दिल्ली में वैश्विक मोटा अनाज सम्मेलन के संबोधित करत प्रधानमंत्री मोदी जी कहलें कि श्रीअन्न विपरीत भइल जलवायु परिस्थितियन में बिना कोनो उर्वरक और रसायन डरले कम आमदनी के स्तर पर भी उगावल जा सकाला। प्रधानमंत्री जी देशवासियन के थाली में श्रीअन्न के मात्रा बढ़ौले के पुकार कैलें। ये तरह वहाँ के बतौली कि खेत से थाली तक मोटे अनाज के सबके फायदा होई। श्रीअन्न जेके मोटा अनाज कहल जाला उकर दिन अब लगत बा फिर बहुर रहल बा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी तंजाकुर हाल ही में चेन्नई में राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन सन 2023 के मेजबानी कैलस। इस सम्मेलन में एक स्वर से यह विचार उपजल कि मोटा अनाज भारत देश खातिर भविष्य के भोजन हवे। इस सम्मेलन में ये बात पर भी चर्चा भइल कि अब केहू के संदेह नहीं बा कि मोटा अनाज के उत्पादन, खपत, आयकर, निर्यात एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कारगर हुई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोटा अनाज फसल के संसार भर में 75.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कई जात बा। भारत के क्षेत्र में ये क्षेत्र में पांचवा बड़ा निर्यातक देश हवे। लेकिन दुनिया के कई देशन के मुकाबले एकर उत्पादन ज्यादा होला। भारत वर्ष में राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र हवे। साल 2020 में भारत वर्ष दुनिया भर में मोटा अनाज के बदे 41% के योगदान करल। लेकिन यह सच बा कि अपने देश में पिछले 50-60 वर्ष में एकर क्रमशः उत्पादन कम हो रहल बा। 1950 से लेके 2019 के बीच में मोटा अनाज के क्षेत्र 9.2 मिलियन हेक्टेयर में रहल, जौन की अब घट के 7 मिलियन हेक्टेयर हो गइल बा। राजस्थान बाजरा बदे और महाराष्ट्र ज्वार बदे पूरे देश में अग्रणी राज्य हवे। गौर करे वाली बात ये बा कि वैश्विक स्तर पर जलवायु में बदलाव भेले के कारण अनाज के उत्पादन पर गंभीर असर पड़ रहल बा। ऐसने बदलाव में मोटा अनाज जलवायु परिवर्तन के मात दे वाली साबित हो रहल बा। कृषि वैज्ञानिक लोग भी मोटा अनाज के महत्व पर प्रकाश डाल रहल बाटे। मोटे अनाज के खेती कम पानी पर और विषम जलवायु में भी हो रहल बा। ये खेती के प्रचार बुनियादी रूप में अपने देश के खेती के मजबूत बनाई, इमें कोनो संदेह नहीं बा। हैदराबाद में स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सेंटर लगातार इस दिशा में खोज कर रहल बा। इस शोध के केंद्र मोटे अनाज के हजार किस्म के विकास पर बा। जलवायु और जमीन के हिसाब से मोटा अनाज के खेती के बढ़ावा देने का काम युद्ध स्तर पर अपने देश में चल रहल बा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मोटा अनाज उत्पादन के ढेर संभावना बा। बिहार के सत्र 2015-16 में मोटा अनाज पैदा कैले के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान रहल। कृषि और एके ये क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजल गईल। यहाँ के किसान लोग मोटा अनाज के खेती कैल भूलल नहीं बाटे। मोटा अनाज के उत्पादन में बहुत कुछ कैले के जरूरत बा। ये अनाज गरीब राज्य और किसानन बदे ज्यादा कारगर हो रहल बा। मोटा अनाज के उपजौले से लागत कम आवेले और परिश्रम भी कम करे पड़ाला। ये फसल कम उपजाऊ मिट्टी में भी

0: हो जाले। मोटा अनाज खातिर कम पानी और उर्वरक और कीटनाशक के कम से कम प्रयोग होला। मोटा अनाज के सेवन कैले से किसान भाई भी स्वस्थ रही है, उनके सेहत चुस्त दुरुस्त रही। काहे से कि इन अनाजन में भोजन के अनेक खनिज मिलाला, जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम, लौह तत्व, विटामिन और प्रोटीन इत्यादि के भंडार है। मोटा अनाज किसान के अपने उपजौले खातिन प्रोत्साहित करे खातिन बहुत कुछ करे पड़ी। अगर मोटा अनाज के प्रोत्साहन मिले तेकर दूरगामी परिणाम हुई। बढ़त वैश्विक खाद्य संकट में जहां समुद्री आहार के पनौले के प्रचार हो रहा बा, वहां दुनिया भर के आंकड़ा के गेहूं और धान के उपज कम हो रहा बा, ऐसने में अगर भारत के एक बड़ जनसंख्या मोटा अनाज के अपनावे तो बहुत बड़ी बात हो सकेले। प्रयोग करे वाली बात ई बा कि स्वास्थ्य संबंधी लाभ हुई, कीटनाशक और रसायन के प्रयोग कम हुई और पर्यावरण के शुद्धि हुई। खाद्यान्न के मामले में हमारे देश के इतना उर्वरता वा कि श्रीहन्न के बढ़ावा दिले के केंद्र और प्रदेश सरकार के अभियान सफल हुई। आय में प्रगतिशीलता भी आई। ये किसानन के खुद मोटा अनाज खेती करे के चाही। आस पास गांवन के भी किसानन के इस दिशा में प्रेरित करे के चाही। इन किसानन के संस्था दू चार नाही बल्क 100 के आस पास बा जौन कर प्रेरणा लेके खेती कर रहा बा। मौजूदा समय में छोटी जोत में इन किसानन के कुल 20 हेक्टेयर खेत में मोटा अनाज खेती उत्तर प्रदेश के जंगल कौड़िया ब्लॉक में हो रहा बा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जंगल कौड़िया ब्लॉक के 3 गांव साखूखोर, बरन और जगदीशपुर के 100 किसानन के श्रीयन उपजौले के प्रेरणा दिलस। एकरे खातिन किसानन के मड़ुआ, टांगुन, कोदो, ज्वार और बाजरा के बीच भी उपलब्ध करौलस। मोटा अनाज के खेती में सबसे बड़ समस्या बीज न मिलने के हवे। बीज न मिलला से एक किसान चाह करके भी एकर खेती बुवाई नहीं कर पावेला। लेकिन गोरखपुर साखूखोर में मिलेट सीड बैंक के स्थापना भइल बा। खुशी के बात ई बा कि किसान भाई लोग ये रुचि लेत बाटे, आई के पैदा कर रहल बाटे। आ यहाँ बात यो बा कि पहले ही गरीब के भोजन रहल, लेकिन अब मोटा अनाज ते अमीर लोगन के भोजन बन गई बा। कई प्रकार के फूड प्रोडक्ट मोटा अनाज से बन रहल बाटे, जौन की बड़ी बड़ी माल और सुपर मार्केट में ऊंचे दाम पर दिक्कत हवे। निर्यात बढ़ने के साथे साथे घरेलू खपत में भी एकर तेजी से विकास हो रहल बा। एकरे नाते तमाम कृषि संस्थान किसानन के मोटा अनाज उत्पादन खातिर प्रोत्साहन दे रहल बाटे। ई तय बा कि आगे आने वाली समय में मोटा अनाज के उत्पादन और निर्यात तेजी से बढ़ी और जौने से जनता जनार्दन के जरिए अब ये अनाजन के इस्तेमाल उकरे भोजन में इस्तेमाल होके लगी, तब निश्चय बा कि उकरे सेहत में भी माकूल सुधार होई।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम देसमार। देसमार में भोजपुरी वार्ता प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर आद्य प्रसाद द्विवेदी। विषय था सेहत का राज, मोटे अनाज। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें आज आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने

0: के लिए शासन भेज दिया है और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
1: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
2: जो दुर्घटना घटना हुई है लखनऊ में, इसी क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
3: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता

0: पता भी किया जाएगा।
1: कजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रखते और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
2: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेयर का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
4: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। एक ही कलाकार, आज की कलाकार हैं मशहूर पार्श्व गायक लता मंगेशकर। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के आवाज़ में पहला गीत। फिल्म का नाम है माचिस।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: लता मंगेशकर के गाए फिल्म संगीत आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था पिघलता आसमान। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कुछ और फिल्मी गीत।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: फिल्म रुदाली के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लता मंगेशकर के गाए फिल्मी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है भेंट वार्ता। वर्तमान केंद्र सरकार के 12 वर्ष का समग्र मूल्यांकन। महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव से मनीष कुमार द्विवेदी से बातचीत। तो आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष द्विवेदी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोरखपुर नगर निगम के महापौर तथा नगर के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी। आपका सर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मनीष जी, आपके सभी रेडियो सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन।
2: आपसे हम ये जानना चाहेंगे, 12 साल अपने कार्यकाल को पूरा किया है या किए हैं मोदी सरकार, जिसमें विशिष्ट उपलब्धियां भी रही हैं, तो आप जब देखते हैं पीछे, एक बार रेट्रोस्पेक्शन करते हैं, पीछे जाते हैं, तो आप कहाँ कहाँ पाते हैं कि जो निर्णय मतलब भारत को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्रांतिकारी निर्णय?
3: आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 12 वर्ष जो है, जो नरेंद्र भाई मोदी जी के अगुवाई में सरकार बनी, उसने राष्ट्र प्रथम को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किए और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ निर्णय ऐसे हुए जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए लाभकारी हुए। जैसे कश्मीर, हमारे भारतवासी जो है अपना हिस्सा ही एक तरह से नहीं समझ पाते थे, तो वहाँ से जब 370 हटा तो एक भारतवासियों के लिए जो है एक अच्छा अवसर था और इस निर्णय का स्वागत भी किया। और केवल अन्य प्रांतों ही में ही नहीं, बल्कि कश्मीर प्रांत के लोगों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और एक तरह से एक राष्ट्र और एक चिन्ह, एक निशान, एक विधान की जो है संकल्पना पूरी हुई। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो है एक बहुत बड़ा विवाद वर्षों से, लगभग 500 वर्षों से चला आ रहा था, 500 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे, राम मंदिर
2: जी
3: अयोध्या में निर्माण हुआ, तो और रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हुए। और हम सब जानते हैं कि जो है भारतवासी जो है हर चीज़ में राम से जुड़ के ही रहता है।

0: आप जीवन में भी सबको मिलते हैं, सुबह सुबह मिलेंगे तो राम राम करेंगे, मृत्यु में भी राम नाम सत्य करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय था, और जो विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा था वो अपने आप समाप्त हुआ। तो इस निर्णय से वो भी एक समस्या का हल निकल के आया। और इसी तरह से इसी क्रम में देखेंगे तो जो है बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जो जनहित से बहुत जुड़ी हुई थी। आप ले लें कि आयुष्मान कार्ड, भारतवासियों को जो एक गरीब व्यक्ति जो है अपनी चिकित्सा के लिए इधर उधर भटकता रहता था, अपने खेत खलिहान गहने सब बेच देता था कि जो है चिकित्सा कराने में, तो 5 लाख तक का जो है एक आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज फ्री में करा सकता है। एक तरह से वो आप कह लें कि 5 लाख का चेक उसके पास रहता है जो जाके कहीं भी अपना इलाज करा सकता है। इस क्रम में आप देखेंगे तो जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भारतवर्ष की जो है हर घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो वो भी एक अच्छा निर्णय था कि जो है हर घर में जो है शौचालय बनाने का कार्य शुरू हुआ। और इस क्रम में कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन और भी जहां तक चिन्हित करके अभी सारे जनप्रतिनिधियों से भी ये मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई देख के अगर कहीं भी बाकी रह गया तो उसमें जो है किया जाए। क्योंकि आप सोचे ना कि जो है महिलाओं को दिन भर इंतजार करना पड़ता था, रात के अंधेरे होने के बाद जो है ही बाहर जा पाती थी, तो ये सब चीजें जो है काफी अच्छा एक प्रयास रहा। तो ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय था। इसी तरह से आप उज्ज्वला योजना को ले लें, घर घर में जो है गैस कनेक्शन पहुंच गया, जो धुएं से बीमारियां होती थी, जो सारी समस्याएं होती थी, अस्थमा की बीमारी, ये अपने आप में बड़ा संकट का विषय था, तो वो भी इस उज्ज्वला योजना के तहत वो कम्प्लीट हुआ। तो ऐसे ही जो है बहुत सारी योजनाएं जो है रसोई गैस सबको दी गई। तो ये सारी चीजें जो है एक देश के विकास के लिए जो आवश्यक है, जो विकसित भारत 2047 की संकल्पना है, उसके लिए ये सारे अभियान जो है चलते रहे और हम काफी हद तक पूर्ण भी हुए हैं। इसी क्रम में आप ले लें कि जिन लोगों के पास अपनी छत नहीं हुआ करती थी तो उनको भी एक ऐसा मिला कि जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है देश और प्रदेश में जो है सबको प्रधानमंत्री आवास मिलने की योजना बनी और वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसी क्रम में अभी अभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो है पिछले दिनों जो है अभी मुश्किल से एक हफ्ते भी नहीं बीते हैं
1: जी,
0: प्रधानमंत्री जी जो है पेरिस में उन्होंने कहा कि साहब जितने हमने प्रधानमंत्री यहाँ पर जितने आवास हैं उससे ज्यादा तो हम प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं। तो ये अपने आप में इतने बड़े देश के लिए एक अच्छा अनुभव है। और बाकी जो है अभी बहुत सारे ऐसे विचार चल रहे हैं जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव, तो ये सारी चीजें जो चुनाव के जो बार बार
1: पिछले 12 सालों में अगर ढांचागत विकास की बात करें जैसे रेल रोड ट्रांसपोर्ट, बहुत हम लोग देख पा रहे हैं कि बदलाव हुआ है। जब आप अपने नजर से देखते हैं, जब आप शीर्ष पे बैठे हैं और देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये स्थिति पर्याप्त है अगर गोरखपुर के संदर्भ में बात करें तो?
0: देखिए गोरखपुर के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जितना हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो है विकास और विरासत दोनों को संभालते हुए उन्होंने एक ऐसा प्रदेश बनाने का संकल्प लिया था और वो पूरा भी हो रहा है कि जिस प्रदेश को हम लोग बीमारू प्रदेश समझते थे उसको उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम बनाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं और काफी हद तक सफल हो गए। और मुझे लगता है उनका लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा होगा, $1 trillion का उनका एक लक्ष्य है इकोनॉमिक कंडीशंस में। आप देखें कि गोरखपुर के दृष्टिकोण से जो आपने प्रश्न पूछा उसमें आप देखें कि गोरखपुर में जल्दी कोई आना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट ऐसा था कि जो है पतली पतली सड़कें जगह जगह जाम, और जनसंख्या जब बढ़ती रहती है तो सड़कों पर दबाव बढ़ता है, तो उसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण किस तरह से उसके जो है बेहतर सड़कें बनाई जाएं और सड़कों की क्वालिटी ऐसी हो जो एक लंबे समय तक क्रियाशील रहे, ऐसा नहीं कि जो है बनाया और तुरंत ही खत्म हो जाए, तो उस क्रम में भी जो सीसी रोड और इस तरह की योजनाएं भी साथ में चलती रहीं। तो मैं समझता हूं कि जो है गोरखपुर में उन्होंने जल संरक्षण पे भी काफी कार्य किया क्योंकि जल संचय भी एक हमारे लिए बड़ा दिक्कत है। और आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे शहरों में जो है पानी की ट्रेन भेजनी पड़ी, बहुत सारे साउथ अफ्रीका केप टाउन ने भी मना कर दिया कि साहब पानी नहीं सकते। तो पूर्वांचल जो है ये अभी तक तो ठीक है कि जो है वहां पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में हम इस संकट से न जूझें इसके लिए अब हम अभी से कार्य योजना बना रहे हैं और नगर निगम भी अपना प्रयास इसमें जारी रखे हुए। बहुत सारी जगहों पे हमने नगर निगम निधि से भी जो है इसको कई जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और रीयूज ऑफ वाटर के लिए भी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग

0: के लिए खास तौर से हम सब ने जो है गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी जो है बैठकर इसकी प्लानिंग की है कि भाई वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रीयूज ऑफ वाटर, एक बार जो आप पानी बेकार फेंकते हैं उसको रीयूज करके कम से कम टॉयलेट और इन चीज़ों में यूज़ हो जाए, जिससे जो जहाँ पर बहुत साफ पानी की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसका प्रयोग करने से भी जो है हमारा थोड़ा जल संचय होगा। हम जन जागरण अभियान भी चलाते हैं, स्कूलों में भी बच्चों को जाकर सफाई और जल संचय पे जो है विशेष तौर से उनसे अनुरोध करते हैं कि भाई अनावश्यक प्रयोग जो जल का है उससे हम लोग बचें और जितना भी संभव हो, जितना आवश्यकता हो उतना ही उसको प्रयोग करें, ना कि जो है एक जल को हम लोग सड़कों पे बहा दें, वो चीज़ ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो है ये बहुत आवश्यक है और आने वाला, मुझे लगता है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आने वाला जो है विश्व युद्ध जो है जल के लिए ना हो जाए, तो इसलिए जो है इस पर भी काफ़ी कार्य गोरखपुर नगर निगम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो है निर्देश में उनके संरक्षण में हम सभी यहाँ पर भी कर रहे हैं और काफी अच्छे परिणाम आए हैं।
1: सर, भारत की सामाजिक स्थिति अगर देखी जाए तो जन दबाव बहुत है, पूर्वांचल में विशेष करके, इसमें गोरखपुर भी आता है। तो मोदी जी की जो संकल्पना थी, भारत सरकार की संकल्पना थी कि डिजिटल इंडिया, तो वो नगर निगम भी उस संकल्पना को कैसे पूरा कर रहा है? जैसे ई गवर्नेंस, मतलब अगर अत्यधिक व्यक्ति आ गए कोई समस्या लेके तो दिक्कत होती है, तो आपके यहाँ क्या ऐसी कोई व्यवस्था पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है कि त्वरित समाधान लोगों को मिल सके और भीड़ भी ना लगाना पड़े?
0: देखिए, इसमें ऐसे है, ज़्यादातर हम लोगों ने नगर निगम का भी डिजिटलाइजेशन काफ़ी हद तक हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो है हम यहाँ पे जो है गोरखपुर नगर निगम में ही जो है हमने ITMS स्थापित किया है और यहीं पर बैठ के हर गाड़ी की मॉनिटरिंग होती है कि उसने वहाँ पर किस घर से कूड़ा, अभी हम लोग जो है उसमें चिप लगा के जो है उसको चलाते हैं और उसके एक एक चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है कि साहब कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, किस घर से कूड़ा लिया, किस घर से नहीं लिया, ये चीज़ें भी जो है हमारी। अच्छा, अब जो सेकेंड की जो है इकोनॉमिकली जो है आप, अगर आपको आना पड़ता है तो इकोनॉमिकली का मतलब मेरा ये हुआ कि खासतौर से उनको किसी को, जैसे अगर मान लीजिए आपको टैक्स जमा करना, तो ऑनलाइन फैसिलिटीज हमने दे रखी है, डिजिटली आप उसको जमा कर सकते हैं। और बल्कि डिजिटल को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारे मोदी जी की, योगी जी की जो है ये रहता है कि भाई कम से कम लोगों को सुविधा बेहतर मिले और उनको अनावश्यक नगर निगम के चक्कर ना लगाना पड़े, तो इसके लिए हमने टैक्स की और भी जो जितने कंप्लेंट्स हैं उनको भी ऑनलाइन कर रखा है। ये सारी चीजें जो है साइमल्टेनियस चल रही हैं जिसकी वजह से हम उसको और बेहतर कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में जितनी भी हमारी कूड़े की गाड़ियां भी हैं उनको भी जो है सब इस पे ITMS पे ही रखा है, जिससे उनको मॉनिटर कर सकें और जो भी शिकायतें आती हैं उनको भी जो है हम तुरंत उसको निस्तारित करने की कोशिश करते हैं। आपके जो कचरा के लिए जो 100 रुपए एक डोमेस्टिक, मतलब एक आप ले आते हैं, अभी उसको भी हम लोग जो है ज्यादातर कोशिश अब ये कर रहे हैं कि जो है उसको ऑनलाइन पेमेंट करें, जिससे एक तो पारदर्शिता भी रहेगी और उनको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो इससे चीजें जो है काफी सुधरी हैं और ITMS गोरखपुर काफी अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए जो है आने वाले समय में उसको और सुदृढ़ करेंगे।
1: सर, कुछ निर्णय जो भारत सरकार द्वारा लिए गए कि उस पे अगर बात करें, आप अगर पीछे मुड़ के देखते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, नोटबंदी हुआ था और बैंकों में पेनिट्रेशन, जो बैंकों में लोगों का कम आना जाना था, तो उसको जब आप देखते हैं तो आप कहाँ पाते हैं? जैसे हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अपने यहाँ नगर निगम में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, माननीय योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं?
0: नहीं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर ये एक भारत के लिए बड़े गर्व का विषय था कि जो भारत कभी जो है इस तरह के एक्शन नहीं लेता था। और भारत में आप देखिए ना, आतंकवादी घटनाएं कितनी कम हो गई इन वर्षों में। आपने शायद ही कहीं सुना हो कि वहां बम विस्फोट हो गया, वहां इतने लोग मर गए। पहले आए दिन ये घटनाएं होती थी, पहले ये लगता था कि जो है वो क्या नाम है, हर जगह लिखा भी रहता था कि कोई संदिग्ध वस्तु छुए नहीं, तो आखिर उसके वजह यही थी ना कि आपने छुआ और बम हुआ और वो फटा, तो एक बहुत बड़ी संकट आ जाता था कि जो है बहुत इस तरह की चीज़। और इवन बहुत सारे शहरों में हुआ, जयपुर हुआ, अयोध्या हुआ, लखनऊ हुआ, गोरखपुर तक में हुआ। तो ये जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो है ये चीज़ें अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करने की हिम्मत रखते हैं तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव पड़ा और जिसमें जो है आतंकवादी घटनाएँ काफ़ी बंद हो गई। आपने देखा होगा कि जो है पहले कश्मीर में पत्थर फेंकने की घटनाएँ बहुत होती थी, तो पत्थर से

0: जो है आर्मी वालों को जो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते थे, कुछ काम ही नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ें स्टोन पेल्टिंग भी बंद हुई। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये सब चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि धमक हमारी यही होनी चाहिए कि जो है अगर विदेशी ताकतें हमें तंग करेंगी तो हम उसका जवाब देना जानते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, पहले भी जो है टारगेट करके वहाँ जाके जो है आतंकवादी अड्डों को जो है ध्वस्त किया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेहतर रहीं और ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है।
1: सर, चूंकि 3 साल आपके पूर्ण हो गए हैं लगभग लगभग, तो आप जब अपने आप को देखते हैं तो कहाँ कमी रह गई जिसको आगामी सालों में, जो आपके कार्यकाल रह गए हैं, उसको आप कोशिश करेंगे कि जब चुनाव आए तो बेहतर स्थिति में हो?
0: देखिए, नगर निगम का काम ऐसा नहीं कोई होता है कि जिसमें कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज़ हो कि जो है जो बहुत इनोवेटिव अलग से काम कर लें। अलग से जितने काम करने की कोशिश की जाती है उसमें हम लोग ने ऑलरेडी करने की प्रक्रिया में हैं। तो जैसे गोरखपुर में एक कचरा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए हम सब ने NTPC से कॉन्ट्रैक्ट किया और CSR में उन्होंने जो है पैसे दिए और उसको जो एस्टेब्लिश किया। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट से जो है ग्रीन एनर्जी बनाने का जो है कार्य चल रहा है और वो अब लगभग 500 टन कूड़ा प्रतिदिन वो निस्तारित करेगा। आधा सेट पूरा हो चुका है, उसकी टेस्टिंग भी हो रखी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या थी और एक कूड़े का पहाड़ भी, अगर आपको ध्यान हो तो जो है राप्ती नदी के किनारे जो एकला बंधा है वहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो 2.26 लाख मेट्रिक टन कूड़ा वहाँ लेगेसी वेस्ट के तौर पर था। उसको हमने साफ किया, वहाँ इको पार्क बनाया, वहाँ पे एक रिवर फ्रंट टाइप चीज आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया राप्ती इको पार्क तैयार है जो पिकनिक स्पॉट के रूप में अब जो भी जाना चाहे वो जाता है और उसका आनंद ले सकता है। तो इसी क्रम में जब भी जैसे पिछले चुनाव में अगर आप बात करें तो मेरे समक्ष हमेशा हर दूसरा तीसरा प्रश्न यही होता था कि वाटर लॉगिंग के लिए क्या करेंगे, क्योंकि गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि गोरखपुर का जो लेवल है वो नदी के लेवल से नीचे है।
1: जी
0: तो इसको आप बाउल शेप या कप शेप कह सकते हैं। तो इसलिए तरह से जो है जब भी पानी बरसता था तो एक बाढ़ तक की तरह की स्थिति हो जाती थी। लेकिन उसके लिए हमने UFMC अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर बनाया जो हमारे नगर निगम में एस्टेब्लिश है, और इससे हमने वैज्ञानिक तरीके से इस बाढ़ का प्रबंधन, अर्बन फ्लड का प्रबंधन शुरू किया और इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए और इसको अभी और बेहतर करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। इसमें जो है हमने सारे जो हॉट स्पॉट्स थे, जितने सेंटर्स थे, उनको हमने चिन्हित किया और वहाँ पर हमने जो है एक सेंसर लगाया जो 90% अगर भरता है तो हमें तुरंत उसका जो है एक तो इन्फॉर्मेशन आती है और दूसरा जो है वहीं पे स्काडा सिस्टम से पंपिंग सेट ऑन हो जाता है, तो उससे हमारा जो है जल निकल जाता है। अब आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में कहीं भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे 2 घंटे से ज्यादा जल वहां भरा हो। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम वो सारे जो है उसको तुरंत आगे निकल जाता है। इसको हम और बेहतर कर रहे हैं और भी जितने भी हमारे बढ़े हुए एरिया हैं उनमें भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा कदम होगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि नगर निगम का काम सफाई का है, पानी का प्रबंधन है, तो ये दोनों कार्यों पे अच्छा संतोषजनक कार्य चल रहा है।
1: सर, सरकार भी काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हैं, अगर कोई अपील जो जन सामान्य के लिए बहुत जरूरी हो, कुछ अपील करना चाहें?
0: मैं तो पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि देखिए गोरखपुर ही नहीं बल्कि हर जगह को अपने देश को साफ सुथरा बनाना है और केवल सरकारी एजेंसियां इस कार्य को पूरी तौर से नहीं कर पाएंगी जब तक कि उसमें जन सहयोग नहीं होगा, प्रत्येक गोरखपुर वासी का सहयोग नहीं होगा। और मैं बताऊं कि मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि गोरखपुर वासियों ने जिस तरह से सफाई में हमें सहयोग दिया जिसकी वजह से पूरे देश में पिछले वर्ष हम चौथे स्थान पर पहुंच पाए, 74वें स्थान पर क्रमांक जब मैंने ज्वाइन किया था तो 74वें क्रमांक पे थे और 74वें से 2 वर्षों में 22 से 4 चौथे स्थान पर हम पहुंच पाए। इसी क्रम में हम सबने जो है सुरक्षा कर्मियों को भी जो है सफाई मित्रों को जो जितने वो सफाई करते हैं उनका संरक्षण बहुत आवश्यक था क्योंकि वही हमारे फील्ड फोर्स हैं, वही हमारे सैनिक हैं जो शहर को साफ सुथरा रखते हैं। तो उनके सुरक्षा मित्र, सफाई मित्र सुरक्षा में भी जो है देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। और जल संचय के लिए भी जो हमने बताया आपको कि जो है विभिन्न स्कूलों में हम जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जल संचय पे जो कार्य किया उसमें भी गोरखपुर को पूरे देश में जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो मैं गोरखपुर वासियों से, देशवासियों से यही अपील करूंगा कि अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को

0: साफ सुथरा बनाएं और हम बेहतर अपना कंट्रीब्यूशन दें। जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा और इस बार गोरखपुर को और अच्छे स्थान पर ले जाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं, नगर निगम प्रतिबद्ध है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे गोरखपुरवासी भी प्रतिबद्ध हैं और इसको हम क्रमांक एक पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, ढेर सारी जानकारी आपने साझा की, आपको हृदय से आभार और आगामी पारी के लिए शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। वर्तमान सरकार के 12 वर्ष का समग्र मूल्यांकन। गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे थे श्री मनीष कुमार द्विवेदी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम अनुगोज। इसमें आज आप कुछ गजलें सुनेंगे तमन्ना बानो की आवाज़ में और कुछ गजलें आप सुनेंगे हरी हरन की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम अनुकूज।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेलिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा।
3: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL Gold TMT सरिया 70 सालों का।

0: और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम अनुगूज, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि की 8:44 हुए हैं। कुछ ही पलों में समाचार, हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
4: It is clearly our responsibility.
5: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
4: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
3: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
6: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से

0: है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
3: We had 26 delegates from
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया।

0: की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4%

0: बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 रुपए पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही

0: मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
0: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना
1: जी
0: होगा
1: जी
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी
1: जी
0: जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए। दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि 2 प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

0: समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
1: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहाँ भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच।

0: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
1: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
0: जी,
1: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्टपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
0: जी,
1: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम को बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6 से लेकर 12 तक
0: जी, फिर
1: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जैवलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जैवलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ। और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे।
0: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़ा लोग ऐसे मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है, उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा
0: जी। बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया, साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला। और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं, तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर
0: जी। तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
0: जी, तो बहुत interesting आपके innovation है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना startup हो, आगे आपकी कोई company हो, आपके products राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय

0: पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
1: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे
0: हाँ,
1: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू
0: सॉल्यूशंस।
1: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स. एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट. बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सॉल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो, एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
1: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ. बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट.
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर.
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
2: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा. बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना. फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए. उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको, बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको, भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ. तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ यू कैन डू वेल, यू कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने उसे काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि उसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा. और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय. फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिला था सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा.
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हमने, हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
2: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी.
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और

0: में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
1: सर, आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। जब मैं एकदम छोटा था तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे। मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
0: जी
1: जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री प्रबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ, तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल
1: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा
0: बिल्कुल
1: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
0: जी
1: संगीत का
0: जी
1: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
0: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
1: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
1: थैंक यू सर।
0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
0: जी आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी, और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं परिवार है वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के

0: राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: चर्चा का विषय है
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL Gold TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग

0: बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: दुनिया से

श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छे गाने सुनाएं और आप तरोताजा महसूस करें।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म कश्मीर की गली के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। सूर्यामिनी में आज आप सुनेंगे मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन राग शुद्ध नट।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में उस्ताद मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन राग शुद्ध नट। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने

नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Stadium in Washington. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। कल प्रातः 5:55 पर हम अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।